0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: X के आगे एक S लगा दो. अगर these are the only two things that your current partner is interested in, then हो सकता है that you are just a rebound and nothing else. एक rebound क्या होता है? It's basically एक इंसान को अपने टूटे हुए दिल के लिए band-aid बनाकर use करना. मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है और उसके साथ unfortunately this is exactly what's happening. She met this guy on a dating app. उसका relationship टूटे and it was a long-term relationship. सिर्फ 2 महीने हुए थे. This girl thought 2 months is enough time to recover. Anyway, इन दोनों को हैंग आउट करते हुए अबाउट 2 महीने और हो गए हैं एंड ऑल दिस गाय इज इंटरेस्टेड इन इज टॉकिंग अबाउट अपनी एक्स या फिर गेटिंग डाउन एंड डर्टी विद माय फ्रेंड. लेकिन उसके दोस्तों में मिलने में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है. उसके इमोशनल नीड्स समझने में भी इस बंदे को कोई इंटरेस्ट नहीं है. ही जस्ट वॉन्ट्स टू थिंग्स. बस वो उसकी एक्स के बारे में बकवास सुनती रहे और जब उसे जरूरत हो टू गेट लाइक रियली इंटीमेट शी शुड बी अवेलेबल. आई टोल्ड हर कि अपने लॉसेस कट कर और निकल यहां से इसके पहले दैट ही एंड्स अप स्कारिंग यू. लेकिन अगर मेरी इतनी अच्छी दोस्त की तरह आपकी भी जिंदगी में यू आर बेसिकली बीइंग ट्रीटेड लाइक अ बैंडेड किसी के टूटे हुए दिल के लिए, मिलॉर्ड मैं ऐसा होने नहीं दूंगी क्योंकि मैं हूं

10 out of 10 क्यों नहीं चाहिए चल ओके देन भरे कलब में रह जाएगी बिल्लो फिर कल ही तू कौन संभालेगा तुझको जब हो

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burka, burka. La fiesta la burka. Mirci, burka.
1: Hello.
2: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेन करी है?
1: हाँ जी, हाँ जी।
2: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
1: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
2: होल्ड कर रहा हूँ।
1: हाँ जी, हेलो।
2: क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
1: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
2: कनेक्ट नहीं हो पाता है, सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
1: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है तो स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
2: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
1: है 3rd K 35/14A 1st फ्लोर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
2: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
1: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
2: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
1: मेरा सनसाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला,
2: वो ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
1: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
2: मैडम, ये इंटरनेट का कनेक्शन है। आप मेरे को क्यों बता रहे हो, ब्लड ग्रुप बताइए।
1: बी पॉजिटिव, 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
2: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
1: राहुल शर्मा। ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
2: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
1: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल थोड़ी
2: जी। आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं? नहीं तो मैं, अरे मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
3: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
1: नहीं,
2: दोबारा कॉल करेंगे। आप क्या वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: जिंदगी में ना आप कितने भी साफ सुथरे हो, जैसे कि मैं अपनी इनसाइट्स को रखने की कोशिश कर रही हूँ विद माय नॉन डेयरी डाइट, द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज कि एक दो चीजें तो यार सब करते हैं जो हम हर एक इंसान को नहीं बता सकते हैं, बट अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है ना क्योंकि यू हेल्ड ऑन टू अ सीक्रेट फॉर टू लॉन्ग, नाउ इज द टाइम एंड दिस इज द प्लेस टू लेट गो ऑफ इट.
3: द सीक्रेट बॉक्स.
2: क्लेंस कर लो अपने आप को, गिल्ट फ्री हो जाओ आप एकदम. एंड टू डू दैट जस्ट सेंड मी योर नंबर इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, एंड आई विल नॉट जस्ट लिसन टू यू बिना जजमेंट के, बट मैं आपको रोज शिफाई भी कर दूंगी और आप एकदम स्मूथ गिल्ट फ्री हो जाओगे. मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
4: Hi Roshi.
2: How are you?
4: I am okay.
2: इतना build up करके.
4: After the confession, I should be better.
2: अच्छा तो आपने ऐसा क्या काम किया है कि आपको एक कन्फेशन की जरूरत है टू फील बेटर इन लाइफ?
4: गलत सीन हो गया है एक बार.
2: क्या करा है, क्या करा है?
4: ऑनलाइन डेटिंग साइट पे बहुत हॉट लड़की पटा तो ली मैंने. उसका एक कंडीशन था कि आई एम इनटू मेन हु कैन कुक.
2: ओके,
4: तो अभी कौन सी बड़ी बात है ना, सोचा कि यूट्यूब वीडियो देख लेंगे और रेसिपी देख लेंगे. तो संजीव कपूर बना सकता था, फिर मैं बना सकता था. उसको मिलने के पहले कोशिश की, ऐसा नहीं है कोशिश नहीं. इसमें मैं कि भैया नहीं हो पाएगा है ना, संजीव कपूर संजीव कपूर है, आप संजीव कपूर नहीं बन पाए. और लड़की तो चाहिए, उसको समझ में भी आ गया, सब कुछ आ गया. अभी गाड़ी चल पड़ी थी, यहाँ से खाना ऑर्डर करके अपने हाथों से बनाया, बेबी करके खिलाया.
2: Are you serious? ये जो झूठ आप, ये जो स्कैम पुल ऑफ कर रहे हो बेबी की आंखों में, ये कितना टाइम हो गया आपको स्कैम पुल ऑफ करते हुए?
4: इसको अभी 3 महीने हो गए. ये हो गया कि लंच और डिनर कर करके रेस्टोरेंट और ढाबे सारे खत्म हुए जा रहे.
2: जिस दिन बेबी ने ये कह दिया ना कि आंखों के सामने मेरे खाना बना के दिखाओ, आई वॉन्ट टू हैव लाइक फिश फ्राई, आई डोंट नो व्हाट.
4: इसीलिए तो कन्फेशन कर रहा हूँ कि इतना ज्यादा पाप ना हो जाए.
2: वैसे मतलब मैं आपको जितना रोशिफाई कर सकती हूँ मैं करने वाली हूँ, तो एक गहरी सांस ले ले झूठे और
0: You've been roshified.
2: You know, मुझे आपसे बातें करके ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरे दिल के ही एक टुकड़े हो? यू नो आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज सो मच मिस्चिफ दैट यू डू ना, वेरी नॉटी बॉय यू आर. आपकी गर्लफ्रेंड वैसे संतुष्ट है आपसे? इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, मुझे आपसे और बातें ही नहीं करनी है. आप जाके किचन में खाना बनाओ, ठीक है? ऑल द बेस्ट टू यू माई डार्लिंग. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी कोई बहुत ही अमेजिंग कहानी है, बहुत ही सुपर्ब कन्फेशन है, आई वांट टू हियर ऑल अबाउट इट. एंड टू टेल मी, हिट मी अप ऑन इंस्टाग्राम या फेसबुक. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ. दैट्स द ट्रूथ, ट्राई मी ऑन इट. और कहीं मत जाना, जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: 333 dating. ये exactly क्या बला है? मैंने इसके बारे में इतना सुना है, but I have no idea what it is. क्या आप इस पर कुछ रोशनी डाल सकती हैं?
0: Roshi के DM से.
2: सुभाष का मुझे मैसेज आया है एंड ही सेइंग कि मैं रोशनी डाल दूं Roshi. वेरी फनी और ट्राइंग टू बी सुभाष. लेट मी टेल यू, 333 एक डेटिंग रूल होता है. ज़्यादा लोग इसके ओरिजिन के बारे में नहीं जानते, कहाँ ओरिजिनेट हुआ था, किस रिसर्चर / थेरेपिस्ट ने ये इंट्रोड्यूस किया था, बट इसका मतलब ये होता है कि 333 सिग्निफाइज कि अर्ली स्टेजेस ऑफ अ रिलेशनशिप में रिलेशनशिप पक्का कैसे करें. और उसके लिए पहला स्टेप है, आपको 3 दिन इंतज़ार करना चाहिए बिटवीन योर फर्स्ट 3 इंटरेक्शंस. तो पहली बार मिले, 3 दिन वेट किया, दूसरी बार मिले, 3 दिन वेट किया, तीसरी बार मिलने के बाद भी 3 दिन वेट किया, उसके बाद आप अपनी इंटरेक्शंस बढ़ा सकते हैं. 3 हफ्ते का इंतज़ार करें बिफोर मीटिंग ईच अदर्स फ्रेंड्स या फैमिली, और 3 महीने का इंतज़ार करें बिफोर डिस्कसिंग मोर सीरियस लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स. समझ गए आप? तो पहले 3 डेज का जो स्पेसिंग है, दैट गिव्स यू टाइम फॉर रिफ्लेक्शन एंड केमिस्ट्री बिल्डिंग. जो नेक्स्ट 3 वीक्स का वेटिंग पीरियड है, उसमें आप ट्रस्ट बिल्ड करते हो, यू गेट टू नो ईच अदर बेटर, यू फिगर आउट वेदर यू रियली वॉन्ट टू मीट द अदर पर्सन्स पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स एंड ऑल ऑफ दैट. और जो फाइनल 3 महीने का पीरियड है, उसमें आप सॉलिडिफाई करते हो अपना रिलेशनशिप और डिस्कस करते हो अपना फटूरे. समझ गए मेरी जान आप? अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही 333 666 1111 3333 कोई भी प्रॉब्लम है, हिट मी अप ऑन इंस्टा या एफ बी

0: Mirchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La virtua la burka. Mirchi, burka.
2: हेलो
3: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
3: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ ऑयल से। ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
2: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
3: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान।
2: कितने दिन तक?
3: ये 1 महीने तक कम से कम।
2: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
3: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
2: बोलो।
3: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
2: कौन सा?
3: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
2: कच्चा? अच्छा।
3: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
2: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ,
3: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
2: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
3: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
2: कुकर? हाँ कुकर तो है।
3: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो।
2: 4?
3: हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
2: अच्छा।
3: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
2: सोडा,
3: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
2: लहसुन? यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना, खाना बना रहा है?
3: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
2: मतलब उसको पकाऊं?
3: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको। इससे ज्यादा और क्या करें यार,
2: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा, रिस्क कौन लेगा, ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
3: यह काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है।
2: नहीं नहीं कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
3: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
2: चल जाएगी?
3: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
2: अबे कौन बोल रहा तू?
3: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
2: अरे यार जरा ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पक्का।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

रेज्यूमे में अगर आप चाहते हो तो अपना फुल टाइम प्रोफेशन लिख सकते हो, बीइंग इन अ रिलेशनशिप। ट्रस्ट मी, आप अगर दो जॉब्स भी कर रहे होते ना एक दिन में तो इतनी भसड़ नहीं होती जितनी एक रिलेशनशिप आपको दे सकता है। जितने सीरियस आप रिलेशनशिप में होते जाओगे उतनी ज्यादा भसड़ रिलेशनशिप में बढ़ती जाएगी। एंड यू नो व्हाट द फनी बिट इज, कि आप कैसे अपने आप को एक रिलेशनशिप में एक पॉइंट पर आके कहते हो कि यार इससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना क्योंकि उसके बाद हार्ट ब्रेक थोड़ा ज्यादा और मजे थोड़े कम हो जाएंगे। एक्चुअली देयर इज नो टेलिंग व्हेन टू स्टॉप इन्वेस्टिंग इन अ रिलेशनशिप। और फिर मेरी तरह आप रिलेशनशिप की मोस्ट पार्ट में आंसू बहाते रहते हो क्योंकि मेरे हर रिलेशनशिप में अगर एक चीज कंसिस्टेंट रही है तो वो ये है कि मैंने उसे अपना फुल टाइम जॉब मानकर अपना पूरा दिल जिगर जान दे दिया उसमें और सामने वाले इंसान ने जस्ट टेकिंग फॉर ग्रांटेड कर दिया मेरे साथ। और अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है ना, यू पुअर थिंग, आई थिंक हमें नोट्स कंपेयर कर लेने चाहिए। दिस साउंड्स टेरिबल। एंड टू डू दैट आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, फुल टर्म काम है रिलेशनशिप में रहना, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE। सो फाइंड मी ऑन द ग्राम या FB एंड व्हाटएवर यू डू, कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mitchie Roshi.
1: Only on Radio Mitchie New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: आप एक हेट्रोसेक्सुअल इंसान हो. बेसिकली इसका मतलब ये है कि यू आर इंटरेस्टेड इन पीपल ऑफ द ऑपोजिट जेंडर. और आपको लग रहा है कि आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है, नई नई बनाई है, डजंट मैटर, वो भी हेट्रोसेक्सुअल है, वो भी इंटरेस्टेड है दूसरे बंदों में, तो विच इज फाइन, क्योंकि आप लोग चिल कर रहे हो विदाउट एनी टेंशन बिटवीन द टू ऑफ यू, ये वो. एंड देन सडनली आफ्टर बींग फ्रेंड्स फॉर ऑलमोस्ट 8-9 months, आपकी बेस्ट फ्रेंड टर्न्स अराउंड एंड सेज, यार तू मुझे काफी क्यूट लगती है. एंड यू आर लाइक, हाँ मुझे भी तो काफी क्यूट लगती है. एंड देन शी इज लाइक, नहीं नहीं, मुझे ना क्यूट से थोड़ी सी ज्यादा अच्छी लगती है. एंड आई एम लाइक, इसका क्या मतलब है सिस्टर? एंड शी इज लाइक, सिस्टर मत बोल यार, इट हर्ट्स माय इयर्स. एंड यू आर लाइक, एक सेकंड, यहाँ क्या हो रहा है, किस तरह की क्यूरियोसिटी चल रही है? एंड आई एम ऑल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ क्यूरियोसिटी. आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, व्हाट योर प्रेफरेंसेस आर, व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू आर इनटू, व्हाट काइंड ऑफ जेंडर्स यू आर इनटू, वो सब ठीक है. लेकिन जब मेरी बेस्टी मुझ पर हिट कर रही है और मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड. मेरे फीलिंग्स इतने कंफ्यूज हो रहे थे ना, दैट I was like, you're almost my borderline sister. यार क्या कर रही है, क्या कह रही है? अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है जिंदगी में, I think we need to talk about it. नहीं, and to do that, you can hit me up Insta पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, and it turns out I have a lot of adventures in life. On that note, कहीं मत जाना, जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: Mirchi. Escabana, buscabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga.
1: Mirchi, murga. ¿Aló? ¿Aló?
2: Sir, very good evening. Thanks a lot.
1: हाँ बोलिए
2: सर. आई एम सो सॉरी सर, बट सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
1: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं, क्या बात
2: है सर, आई एम सो सॉरी, पूरा बता दिए.
1: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
2: सर आपने उसमें से अभी तक कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
1: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
2: आई एम सो सॉरी सर, ऐसे कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
1: नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
2: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
1: नहीं, मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
2: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
1: पागल पागल है क्या?
2: अब तो देने पड़ेंगे सर.
1: हेलो.
2: अब तो फंस गए देने पड़ेंगे.
1: कौन बोल रहा है? विपिन?
2: नहीं सर, तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
1: पागल
2: है क्या? दिमाग खराब है क्या तेरा? पैसे देने
1: पड़ेंगे. हेलो
3: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया.
1: उसके पैसे क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
3: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे. आप अभी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
1: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
3: हाँ जी. अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर. मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: with G. R-O-C-H-I-E.
1: Roshi, Roshi.
0: Mitchie Roshi.
2: Only on Radio Mitchie, New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
3: जिंदगी में ना आप कितने भी साफ सुथरे हो, जैसे कि मैं अपनी इनसाइट्स को रखने की कोशिश कर रही हूँ विद माय नॉन डेयरी डाइट, द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज कि एक दो चीजें तो यार सब करते हैं जो हम हर एक इंसान को नहीं बता सकते हैं, बट अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है ना क्योंकि यू हेल्ड ऑन टू अ सीक्रेट फॉर टू लॉन्ग, नाउ इज द टाइम एंड दिस इज द प्लेस टू लेट गो ऑफ इट.
2: द सीक्रेट बॉक्स.
3: क्लेंस कर लो अपने आप को, गिल्ट फ्री हो जाओ आप एकदम. एंड टू डू दैट जस्ट सेंड मी योर नंबर इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. एंड आई विल नॉट जस्ट लिसन टू यू बिना जजमेंट के, बट मैं आपको रोशिफाई भी कर दूंगी और आप एकदम स्मूथ गिल्ट फ्री हो जाओगे. मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
4: Hi Roshi.
3: How are you?
4: I am okay.
3: इतना build up करके.
4: After the confession, I should be better.
3: अच्छा तो आपने ऐसा क्या काम किया कि आपको एक कन्फेशन की जरूरत है टू फील बेटर इन लाइफ?
4: गलत सीन हो गया है.
3: क्या करा है, क्या करा है?
4: ऑनलाइन डेटिंग साइट पे बहुत हॉट लड़की पटा तो ली मैंने. उसका एक कंडीशन था कि आई एम इनटू मेन हु कैन कुक.
3: ओके,
4: तो अभी कौन सी बड़ी बात है ना, सोचा कि यूट्यूब वीडियो देख लेंगे और रेसिपी देख लेंगे. संजीव कपूर बना सकता था, फिल्म बना सकता था. उसको मिलने के पहले कोशिश की, ऐसा नहीं है कोशिश नहीं, इसमें मैं कि भैया नहीं हो पाएगा है ना, संजीव कपूर संजीव कपूर है, आप संजीव कपूर नहीं बन पाए. और लड़की तो चाहिए, उसको समझ में भी आ गया, सब कुछ आ गया. अभी गाड़ी चल पड़ी थी, यहाँ से खाना ऑर्डर करके अपने हाथों से बनाया, बेबी करके खिलाया.
3: Are you serious? ये जो झूठ आप ये जो स्कैम पुल ऑफ कर रहे हो बेबी की आंखों में, ये कितना टाइम हो गया आपको स्कैम पुल ऑफ करते हुए?
4: इसको अभी 3 महीने हो गए.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
1: हिट

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: पता है जब से मैं छोटी थी ना एक बहुत बुरी आदत पिकअप कर ली थी मैंने ऑफ सेटलिंग विद मीडियोकर लव. अगर कोई इंसान मुझे पूरी तरह से प्यार नहीं कर रहा था उस तरह से प्यार नहीं कर रहा था जिस तरह से मैं वापस उसे प्यार कर रही थी आई वॉज ओके विद दैट. और ज़िंदगी में बड़े होते होते आई रियलाइज कि जो भी प्यार हम एक्सेप्ट करते हैं ना हमें ऐसा लगता है कि हम बस उतने ही प्यार के हकदार हैं. धीरे धीरे आई स्टार्टेड पुटिंग माई फुट डाउन. आई स्टार्टेड सेइंग नो टू टॉक्सिक रिलेशनशिप्स. मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था बिकॉज कहीं ना कहीं मैंने अपने साथ समझौता कर लिया था कि अगर 100% प्यार वापस नहीं मिल रहा है तो इट्स ओके. मैं 50% से भी काम चला लूंगी. टिल माय मॉम केप्ट टेलिंग मी नहीं रोशी तू जितना प्यार देती है उतना ही प्यार रिसीव करने की हकदार भी है. ये जर्नी मेरे लिए बहुत मुश्किल थी ऑफ गोइंग फ्रॉम एक्सेप्टिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स टू गेटिंग टू अ पॉइंट वेयर आई सेड कि अगर आप मुझसे उतनी मोहब्बत नहीं कर सकते जितना कि मैं आपसे करती हूँ देन शायद ये अनइक्वल रिलेशनशिप नहीं चलेगा. बट ट्रस्ट मी दैट जर्नी वॉज रियली

रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: द शो स्टार्ट्स इन
3: हर फ्राइडे बॉलीवुड डिसाइड करता है कि इस हफ्ते कौन सी कहानी ट्रेंड करेगी, कौन सा हीरो मास्क लगेगा, कौन सा ट्रेलर इंटरनेट तोड़ देगा एंड कौन सा गाना शादियों में बजेगा। लेकिन असली सवाल हमेशा सेम रहता है, इस शोर में क्या टिकने वाला है? क्योंकि हाइप तो बहुत चीजों की बन जाती है लेकिन लेगेसी बहुत ही कम की होती है। एंड इस वक्त हिंदी सिनेमा एक अजीब से फेज में है। सुपरस्टार्स अब भी बड़े हैं लेकिन ऑडियंस उनसे भी बड़ी हो चुकी है। हम इंस्टेंटली जज करते हैं, इंस्टेंटली ट्रोल करते हैं, इंस्टेंटली वर्शिप करते हैं। एक रील करियर बना देता है और एक फ्राइडे नैरेटिव बदल देता है। लेकिन फिर भी हर हफ्ते कुछ गाने ऐसे आते हैं जो शोर को काट देते हैं, कुछ फिल्म्स जो सिर्फ चलती नहीं कल्चर बन जाती हैं, कुछ आवाजें जो प्रूव करती हैं कि बॉलीवुड अभी भी दिल से जिंदा है। तो चलो इस हफ्ते के बिगेस्ट सॉन्ग्स, बिगेस्ट स्टोरीज और बिगेस्ट बॉलीवुड पल्स को डीकोड करते हैं। दिस इज द मिर्ची टॉप 20 एंड आई एम योर होस्ट सुरेन सुंदरम। एंड गाड़ी शुरू होती है विद द मोस्ट डोमिनेंट फिल्म एंड उसका ये डोमिनेंट टाइटल ट्रैक आपने सुना है, बहुत बार सुना है।
4: नंबर 20
5: दे दिल पर देती नूतन नित दारुणा।

बॉलीवुड में अगर किसी कंपोजर ने हमें ये सिखाया है कि म्यूजिक सिर्फ सुना नहीं, फील किया जाता है, then it has to be A.R. रहमान। लेकिन रहमान साहब का म्यूजिक आजकल पहले जैसा इंस्टेंट हिस्टेरिया क्रिएट नहीं करता, और शायद वो प्रॉब्लम नहीं है, शायद वो डिजाइन है। क्योंकि रहमान साहब के गाने फास्ट फूड की तरह, बर्गर्स, पिज्जाज की तरह बिल्कुल नहीं होते। They are like slow poison. पहली बार सुनो कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, दूसरी बार सुनो तो इंट्रीगिंग लगते हैं, और फिर एक दिन अचानक गाना आपके अंदर घर बना लेता है। रहमान साहब मेलोडी को स्पून फीड नहीं करते, वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, टेक्सचर्स, साइलेंसेस, ट्रेन साउंड, स्पिरिचुअलिटी, लॉन्गिंग, और इसीलिए उनके गाने वायरल कम होते हैं, डिस्कवर ज्यादा किए जाते हैं।

0: इनिशियली लोग बोल रहे थे ये तो बहुत डीप है, आज ये एक इमोशनल एंथम बन गया है। और अब मस्कारा को देखो फ्रॉम मैं वापस आऊंगा, इम्तियाज अली, दिलजीत दोसांझ, रहमान साहब, इरशाद कामिल, ये कोई लाउड चार्ट बस्टर नहीं है, ये वो टाइप का गाना है जो शायद 3 महीने बाद सडनली आपको हिट करेगा। और ऑनेस्टली मुझे लगता है बॉलीवुड का नेक्स्ट बिग म्यूजिक ट्रेंड यही होने वाला है, द स्लो बर्न एल्बम्स, एल्बम्स जो पहले ग्रो करती हैं और फिर एक्सप्लोर करती हैं। एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ विद चांद मेरा दिल, पहले लोग बोल रहे थे यार अच्छी एल्बम है, अब हर हफ्ते एक नया गाना इमर्ज हो रहा है और इस वक्त द लेटेस्ट वन इज मेकिंग सीरियस नॉइज। फ्रॉम चांद मेरा दिल, कंपोज बाय सचिन जिगर, राघव चैतन्य और जुनीता गांधी की आवाज में, दिस इज खासियत, डेब्यूइंग ऑन नंबर 18।
1: Number 18.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
1: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
1: हाँ मनोज जी, मैं यादपाल बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
2: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है पूरी दिल्ली में। मैं तो सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
1: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
2: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
1: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात अपने तक ही रखना।
2: बोलो।
1: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
2: कौन सा?
1: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
2: अच्छा अच्छा।
1: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
2: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ,
1: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
2: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
1: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
2: कुकर? हाँ कुकर तो है।
1: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
2: अच्छा।
1: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
2: सोडा,
1: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
2: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना खाना बना रहा है?
1: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
2: मतलब उसको पकाऊं?
1: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको। इससे ज्यादा और क्या करें यार,
2: ऐसे कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क? कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
1: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है।
2: नहीं नहीं कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
1: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
2: चल जाएगी?
1: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
2: अबे कौन बोल रहा तू?
1: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
2: अरे यार जरा ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 14.

0: बॉलीवुड का मूड कितनी जल्दी स्विच होता है। अभी जो गाना आपने सुना प्रेम की लीला फिल्म कृष्णावतारम, जिसे गाया है श्रेया घोषाल और जावेद अली ने। ट्रेडिशनल कॉम्पोजिशन है, ओल्ड स्कूल डिवोशन, नो ईडीएम ड्रॉप्स, ना कोई फोर्स्ड कूलनेस, बस सुर हैं, भाव हैं और सिंसियरिटी है। एंड देखो, ऑडियंस ने उसे सीधा दिल में जगह दे दी। डेब्यू किया इस गाने ने नंबर 14 पर, और शायद इसीलिए म्यूजिक का साइंस अब पहले से ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है, क्योंकि कब क्या कनेक्ट कर जाए नोबडी नोज एनीमोर। और इस साल का सबसे बड़ा सरप्राइज मेरे लिए था कॉकटेल का वो गाना जब तलक। यार जरा सोचो, अरिजीत सिंह, प्रीतम दा, अमिताभ भट्टाचार्य, एंड देन यू गॉट शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना एंड कृति सैनन। ये लाइनअप देख के तो लगता है कि गाना चार्ट पे आएगा नहीं, सीधा कब्जा कर लेगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। गाना आया तो सही, लेकिन इंपैक्ट नहीं बना। इनफैक्ट टॉप 10 तक भी नहीं पहुंच पाया और क्वाइटली इस काउंटडाउन से एग्जिट मार चुका है। और शॉक इसलिए भी ज्यादा लगता है क्योंकि शाहिद और प्रीतम दा का म्यूजिकल पार्टनरशिप तो हिस्टोरिकली लीथल रहा है।
1: साड़ी के पॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे।
0: ये वो कॉम्बो है जो फुल मैडनेस को भी एक म्यूजिकल इवेंट बना देता था। इसके बाद जरा सा मूड स्विच कर लो।

0: एंड सडनली वो सेम डुओ हार्टब्रेक को इतना सॉफ्ट बना देता है कि आदमी खिड़की के बाहर देखना शुरू कर देता है, वो भी बिना किसी रीजन के. एंड देन ऑफ कोर्स यू गॉट दिस सॉन्ग.
1: तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही, तुमसे ही.
0: बस यार ये गाना तो कल्चरली इमॉर्टल है. ऐसे गाने रिलीज नहीं होते, अडॉप्ट किए जाते हैं. इसलिए जब तलक का इतनी जल्दी फेड हो जाना जेन्युइनली अनएक्सपेक्टेड था एंड मेरे लिए काफी शॉकिंग भी. लेकिन फ्रीदंदा का गेम खत्म समझना गलती होगी. भूत बंगला का राम जी आके भला करेंगे नंबर 13 पर पहुंचा इस हफ्ते. लेकिन कॉकटेल का जो अपकमिंग गाना है माशूका, वो मैंने सुना है एंड दैट वन साउंड्स फार मोर डेंजरस. लेकिन अभी फ्रॉम एन ईरा व्हेन शाहिद कपूर एंड प्रीतम दा सिंपली कुड नॉट मिस, ये वाला गाना है फ्रॉम मौसम जिसे गाया है शाहिद माल्या ने. रब्बा मैं तो मर गया ओए. माय पिक ऑफ द वीक.
2: पिक ऑफ द वीक.

0: ग्रेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Only on Mirchi. It's hot. Number 5.

0: कभी कभी एक फिल्म खत्म होने के बाद भी वो खत्म नहीं होती। धुरंधर और धुरंधर 2 एग्जैक्टली वैसी ही फिल्म्स निकली। सिर्फ बॉक्स ऑफिस सक्सेस नहीं, कल्चरल टेकओवर किया, मीम्स आए, फैन एडिट्स आए, एक्शन सीन्स वायरल हुए। लेकिन सबसे डेंजरस चीज पता है क्या हुई? डायलॉग्स जो है वो हमारे दिलो दिमाग में घुस गए। और ऑनेस्टली बॉलीवुड को इसकी सख्त जरूरत है, क्योंकि आजकल हम देखो फिल्म्स देखते तो बहुत हैं, लेकिन याद हमें बहुत कम रहती हैं। क्योंकि एक वक्त था जब हिंदी सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता था, रोजमर्रा की भाषा हुआ करती थी। कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तुमसे ना हो पाएगा। ये लाइन्स स्क्रिप्ट्स का पार्ट नहीं थी, ये इंडिया का पॉप कल्चर सॉफ्टवेयर थी। लेकिन आज हजार करोड़ की फिल्में आ रही हैं, लेकिन थिएटर से बाहर निकलते ही आधे से ज्यादा डायलॉग्स मेमोरी से लॉग आउट कर जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि या तो फिल्म्स रियलिज्म में इतनी धीमी हो गई हैं कि कोई लाइन हवा नहीं पकड़ती, या फिर हर दूसरा डायलॉग एक मास मोमेंट बनने की इतनी कोशिश करता है कि असली स्वैग गायब हो जाता है। आइकॉनिक डायलॉग्स लिखे नहीं जाते यार, वो फील होते हैं। और धुरंधर ने हमें याद दिलाया कि बॉलीवुड जब डायलॉग बाजी सही करता है ना, तो ऑडियंस सिर्फ तालियां नहीं बजाती, वो डायलॉग्स घर ले जाती है। इस हफ्ते का कारण नंबर 4 इज ऑल्सो अ धुरंधर।
1: नंबर 4।

लेकिन अब एक स्पेशल गाना, एक ऐसी फिल्म से जिसके डायलॉग्स लिटरली इंडियन पॉप कल्चर की परमानेंट प्रॉपर्टी बन चुके हैं। फ्रॉम जब वी मेट, कोई डाउट मत रखना दिल में, सिखनी है ये भडिंडा की।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 3।
2: वाह,

भी दसदा ने सिर्फ चार्ट्स क्लाइम नहीं किए, ऑनेस्टली उसने अक्षय कुमार के बॉक्स ऑफिस कॉन्फिडेंस को CPR दे दिया है। लेकिन इस वक्त बॉलीवुड का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर कॉन्वर्सेशंस थिएटर्स में नहीं, टेलीग्राम ग्रुप्स में चल रहा है। धुरंधर 2 द रिवेंज द सेकंड पार्ट, बेसिकली इंडिया में इसके OTT रिलीज का वेट इतना इंटेंस था ना कि लोग लिटरली काउंट डाउन कर रहे थे। प्रॉब्लम ये थी कि फिल्म पहले एक प्लेटफॉर्म पे आनी थी और फिर 2 हफ्ते बाद दूसरे प्लेटफॉर्म पे आनी थी, और इन दोनों OTT प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शंस भाई EMI लगने लगे थे। और फिर बीच में मेकर्स ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, फिल्म को इंटरनेशनली रिलीज कर दिया 14 मई को। बस गेम ओवर, क्योंकि बॉलीवुड अभी तक ये बात समझ नहीं पाया है कि इंटरनेट को ज्योग्राफी समझ नहीं आती। अगर आपकी फिल्म दुनिया के किसी भी कोने में अगर एक बार किसी OTT प्लेटफॉर्म पे आ गई तो 2 घंटे में वो पायरेटेड वेबसाइट्स पर भी आ जाती है, और वो भी कोई 240 पिक्सल, वो सिनेमा हॉल वाला प्रिंट वाली क्वालिटी नहीं, जिसमें बीच में किसी की परछाई नजर आती है, पिक्चर हिल रही होती है या साउंड बिल्कुल बकवास होता है। आई एम टॉकिंग ऑफ प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर 4K फाइल। अब तो सोशल मीडिया पे लोग रिव्यूज से ज्यादा लिंक्स एक्सचेंज कर रहे हैं। पहले लोग पूछते थे कि भाई स्टोरी कैसी है, अब लोग पूछ रहे हैं भाई लिंक है क्या तेरे पास। और ये बहुत ही डेंजरस साइन है, क्योंकि एक वक्त था जब पायरेसी कन्वीनियंस की वजह से होती थी, आज पायरेसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से हो रही है। ऑडियंस फिल्म देखना तो चाहती है, इनफैक्ट इमीडिएटली देखना चाहती है, लेकिन अफोर्डेबल तरीके से देखना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब फिल्म देखने के लिए एक आदमी को 3 apps, 4 passwords, 5 subscriptions और 15-20 एड से गुजरना पड़ता है। और इसीलिए पायरेसी फिर से एक डरावना कमबैक कर रही है। और आयरनी देखो ना, जिस फिल्म को लोग इलीगली हंट कर रहे हैं उसी फिल्म का गाना 14 हफ्तों से इंडिया का नंबर 1 गाना बना हुआ है, फ्रॉम धुरंधर शरारत। और ये शरारत सच में महंगी पड़ गई। नंबर 1।

0: The Mania is still on, but Shararat बाकी गानों से ज्यादा पॉपुलर निकलेगा ये कभी नहीं सोचा था। एक और टाइटल ट्रैक है इश्क चला कर है, गहरा हुआ आरी आरी, इनको सुन के लगा था कि ये शायद आगे निकल जाएंगे, बट नो शरारत इट इज। बढ़े या मेरी थोड़ी ना चलती है, इट इज यू एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम मिर्ची टॉक 20 के एक नए एपिसोड के साथ। अंटिल देन सरेन ओवर एंड आउट।
1: के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: ¡Ay! ¡Ahora va!
1: ¡Ahora va!
2: ¡Hit Gunny!
3: Radio Merchy, New York. It's hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
3: कह दूं तुम्हें
4: हाँ
3: या चुप रहूं
4: ना,
3: दिल में मेरे आज क्या है।

0: पुराने जमाने की बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस माला सिन्हा जी को गाने का बहुत शौक था। रिची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनिए एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने सिंगिंग पैशन के बारे में क्या शेयर किया था।
1: मुझे शुरू से ही गाने का शौक था। जब मैं छोटी थी तो खूब गाया करती थी, और वो गाने भी किसके, पिताजी के, आए गाने वाला, ये जिंदगी उसी की है, लाल दुपट्टा मलमल का, जितने उनके गाने मुझे बहुत अच्छे लगते थे। और ईश्वर ने भी मुझे आवाज बहुत अच्छी दे रखी थी, तो मैं जब गाती थी तो सबको बोलते थे तो दूसरी छोटी बेबी लता गा रही है, तो मैं डिट्टो नकल करती थी। तो इस तरह से एनकरेजमेंट मिलते मिलते फिर मैंने अपना टीचर, मेरे डैडी ने रखा, तालीम ली। बोलते ना, इंसान सोचता है कुछ और होता है कुछ। तो जब मैं बॉम्बे आई एक्टिंग के लिए आई, गाना पीछे रह गया, एक्टिंग चल पड़ी।
0: वेल, आगे भी गाना है इन्हीं की फिल्म का, सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Mirchi.
2: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Murga, murga. La viudvala murga. Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
3: हाँ जी, हाँ जी।
4: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
3: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
4: होल्ड कर रहा हूँ।
3: हाँ जी, हेलो।
4: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
3: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
4: कनेक्ट नहीं हो पाता है? सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
3: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
4: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
3: है 35/14A फर्स्ट फ्लोर नगर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
4: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
3: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
4: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
3: मेरा सनसाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला है।
4: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
3: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
4: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
3: बी पॉजिटिव, दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
4: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
3: राहुल शर्मा। ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
4: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
3: सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल होना चाहिए।
4: जी आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
3: क्या
4: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
5: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
3: नहीं,
4: दोबारा कॉल करेंगे। आपका वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
7: इट्स पटाक।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

0: एक्ट्रेस माला सिन्हा का बचपन कलकत्ता में गुजरा। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और जब ये छोटी थी तो सिंगर बनना चाहती थी। सुनिए एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: चाहा था इसलिए तो मैं गाती थी, टीचर रखा, फिर बाद में मुझे ऑफर गाने का तो नहीं एक्टिंग का मिला। 10-11 साल की थी तो चाइल्ड आर्टिस्ट का मुझे ऑफर मिला। डैडी के एक दोस्त प्रोड्यूसर थे अरविंदु मुखर्जी, हमारे पड़ोस में ही रहते थे, वो मुझे देखते थे गाना गाते, खेलते कूदते। कभी कभी हमारे स्कूल में जब प्रोग्राम होते थे तो वो एक पिक्चर बना रहे थे जोग बियोग, तो उन्होंने डैडी को कहा कि भाई आपकी बेटी मुझे बहुत टैलेंटेड लगती है, देखो सबके आगे गा रही है, उसमें कोई कॉम्प्लेक्स या डर कोई ऐसा भाव कुछ है ही नहीं, ये आर्टिस्ट है, मैं पिक्चर बना रहा हूँ, आई वॉन्ट हर टू कास्ट चाइल्ड आर्टिस्ट। तो डैडी ने कहा ठीक है, लेट अस सी कैसी लगती है ऑन द स्क्रीन। तो वहाँ से फिर मुझे एक्टिंग का चस्का पड़ गया।
0: यहीं से वो बंगाली फिल्मों में पहले चाइल्ड एक्टर बनी, फिर उन्हीं फिल्मों में लीड एक्ट्रेस बनी और फिर बॉम्बे आई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुराने जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: भाई एक्ट्रेस माला सिन्हा जब छोटी थी तो उनके एक अंकल जो कि डायरेक्टर भी थे उन्होंने उनको एक फिल्म ऑफर की एज अ चाइल्ड एक्टर। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन तब उनकी पढ़ाई भी चल रही थी, सुनिए इस बारे में एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: पढ़ाई भी चल रही थी और हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, पहले तो अब डैडी डर गए एक्टिंग करने के लिए छुट्टियां भी मिलेगी कि नहीं, ऑब्जेक्शन ले, अरे भाई एक्ट्रेस एक्ट्रेस हमारे स्कूल में नहीं पढ़ने का। पर शी वाज सो एनकरेजिंग, मिस दास था उनका नाम, तो उन्होंने कहा अरे ये तो अच्छी बात है, इफ शी इज टैलेंटेड, उनमें टैलेंट है तो उसको तो एक्सप्लॉइट होना ही चाहिए, उसको आगे बढ़ना ही चाहिए। तो हम इनका जो नोट्स है ना, हम उनकी सहेली से जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनसे नोट्स करवा लेंगे, जिस जिस दिन वो नहीं आएंगी मिस करेंगी तो लेटर गो अहेड। तो उन्होंने भी एनकरेज किया, बोले कि टैलेंट को दबाना नहीं चाहिए। तब उनको पता नहीं था कि मैं एक्टिंग कर ले, तो बाद में वो तो अचंभा रह गए, बोले शी कैन एक्ट ऑल्सो। तो डैडी ने कहा हम जरा देख रहे हैं, फ्रेंड का चेयर है तो शौकिया कर रहे हैं, तो श्योर से एनकरेज। इस तरह से मुझे डैडी से, मेरा प्रिंसिपल से, प्रोड्यूसर अंकल से जो एनकरेज मिला, तो फिर आगे बढ़ती गई।
0: वेल, ये कितनी प्रोग्रेसिव बात है, एंड लेट मी रिमाइंड यू ये मिड 40s की बात है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों ओनली ऑन।

0: मिड 50s तक माला सिन्हा बंगाल की एक एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस बन चुकी थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन कलकत्ता से बॉम्बे में उनकी एंट्री कैसे हुई, सुनिए एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: मुझे यहाँ बॉम्बे में ऑफर मिला, वो भी कैसे, फिल्म फेयर में। फिल्म फेयर भी नई नई थी, आई थी मार्केट में, तो उसमें मेरा एक फोटो छप गया। तो अमिया चक्रवर्ती जी, जिन्होंने दाग बनाई थी, सीमा बनाई थी, कठपुतली बनाई थी, उन्होंने फिर मुझे साइन किया साइड हीरोइन, क्योंकि देखने में हीरोइन लगती थी ना, साइड साइड के लिए ठीक थी, छोटी छोटी पतली पतली लड़की चुलबुली से। तो उसका उस बादशाह में उन्होंने मुझे प्रदीप जी के, प्रदीप कुमार एगेंस्ट में प्रिंसेस का, और वो प्रिंस, ये प्रिंसेस को पसंद नहीं करते, वो तो वो होता है बंजारा गर्ल, अपना उषा किरण जी हीरोइन बंजारन थी, मैं प्रिंसेस। तो उसी पिक्चर से मुझे बॉम्बे में आने का मौका मिला।
0: वेल, इस फिल्म का नाम था बादशाह। इसके बाद मिड 50s में उनकी कुछ हिंदी फिल्में और आईं, लेकिन जो फिल्म उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई वो थी 1957 की प्यासा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची.

किशोर कुमार और आशा भोसले ने साथ में कुछ 600 गाने गाए होंगे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और कई गानों में उनको रिकॉर्डिंग करने में बहुत दिक्कत आती थी, पता है क्यों? क्योंकि किशोर कुमार इतने शरारती थे, इतना मजाक करते थे कि आशा भोसले की हंसी नहीं रुकती थी और रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती थी। किसी फन सॉन्ग में किशोर कुमार जमीन पे लोटपोट हो जाते थे, उठते ही नहीं थे, और आशा भोसले हंसती रह जाती थी और गाना ही रिकॉर्ड नहीं हो पाता था। ऐसी बातें आशा भोसले जी ने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में शेयर की हैं। हाय, कितने मजेदार होते होंगे वो रिकॉर्डिंग सेशंस। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो हेलो
4: सर वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ।
3: हाँ बोलिए
4: सर। आई एम सो सॉरी सर, बट सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
3: बनवाया था भैया, क्या हो गया?
4: सर आई एम सो सॉरी, पूरा बता रही
3: है। क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
4: सर आपने उसमें से अभी तक कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
3: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
4: आई एम सो सॉरी सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर। सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
3: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। हेलो
4: आई एम सो सॉरी सर, सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था। सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
3: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा। भैया पागल है क्या?
4: I'm so sorry सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे।
3: पागल पागल है क्या?
4: अब तो देने पड़ेंगे सर।
3: हेलो
4: अब तो फंस गए देने पड़ेंगे।
3: कौन बोल रहा है?
4: नहीं सर तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे।
3: हम
4: तो फंस गए सर।
3: हेलो
5: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ सर। आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है।
3: उसके पैसे को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
5: नहीं सर वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ।
3: मतलब ये पक्की बात है आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
5: हाँ जी। अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर, मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

देवानंद साहब के फादर एक लॉयर थे, उसी के साथ साथ फ्रीडम फाइटर और स्कॉलर भी थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी थी, बहुत सारी लैंग्वेजेस उनको आती थी, बहुत सारे वर्ल्ड रिलीजन्स के बारे में वो जानते थे, और इसीलिए कहीं ना कहीं देवानंद साहब का इंक्लिनेशन भी पहले पढ़ाई की तरफ था। देवानंद साहब ने डलहौजी से अपनी स्कूलिंग की, फिर धर्मशाला में भी पढ़ाई की। ये सब जगहें तब पंजाब प्रांत में आती थी, पार्टीशन से पहले की बात है। फिर इंग्लिश में बीए किया और वो एमए भी करना चाहते थे, लेकिन उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई उनके फादर तब अफोर्ड नहीं कर पाए। एंड उसी दौरान देवानंद साहब रियलाइज्ड कि कहीं ना कहीं उनका ये जो छोटा सा सपना एक्टर बनने का चल रहा था, उसको पूरा करने का वक्त आ गया है। बस उन्होंने ट्रेन पकड़ी और बॉम्बे आ गए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: आपको पता है शम्मी कपूर साहब के गानों के लिए यूजुअली कोई कोरियोग्राफर नहीं होता था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और अगर होता भी था तो उनको वैसी कोरियोग्राफी करनी पड़ती थी जैसे शम्मी कपूर साहब का यूनिक स्टाइल था। और तो और ये कई बार अपने कपड़ों की स्टाइलिंग भी खुद ही करते थे। सुनिए एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: I did because I've been, I traveled a lot. I've been to Singapore, Hong Kong, Japan, Tokyo. I mean, I used to go to these places, I used to pick up clothes. I was in London, I used to pick up clothes. I went to Paris, Berlin. All the clothes that you saw in my movies in those days were my clothes. I had bought them for myself. I used to dress up specially. Even that jacket in Jungle is mine. So, I had an eye for that.
0: Well, that style, that swag, that energy, that aura, that charm. शम्मी कपूर साहब, ओए होए, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
2: बदन पे सितारे लपेटे हुए

जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

हमें जिनसे इश्क है उन्हें हमसे इश्क नहीं, उन्हें जिससे इश्क है उसे उनसे इश्क नहीं। मिर्ची सुन रहे आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये गाना हमने जो सुना ये थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का है, सुलक्षणा पंडित एंड अनवर की आवाज में। सुलक्षणा जी बहुत अच्छी सिंगर थी, एक्ट्रेस थी, एंड शी वॉज मैडली इन लव विद संजीव कुमार। सोचिए कितना प्यार होगा। दोनों की डेथ डेट सेम ही रही, 6 नवंबर। संजीव कुमार जी 1985 में गुजर गए थे, एंड आफ्टर दैट सुलक्षणा पंडित बेजार हो गई थी काम से, तब से उन्होंने काम अपना कम कर दिया था बहुत। और संजीव कुमार ने उनका प्रपोजल क्यों रिजेक्ट किया, बिकॉज कहीं ना कहीं वो अपने हेल्थ के बारे में वाकिफ थे कि उनकी हेल्थ बिगड़ सकती है। ऑल्सो वो कहीं ना कहीं हेमा मालिनी के प्यार से गेट ओवर नहीं कर पाए। हेमा मालिनी ने उनका प्रपोजल रिजेक्ट किया था ना। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और ये गाना सुनेंगे अगेन सुलक्षणा पंडित एंड किशोर कुमार की आवाज। फिल्म का नाम दूर कराही। सुनते रहिए मिर्ची

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।

कैफी आजमी साहब के लिखी हुई गजल। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और मुझे ना उनकी कुछ और लाइंस बहुत अच्छी लगती हैं। आई थिंक मैंने पहले भी शेयर की हैं कि शोर यूं ही ना परिंदों ने मचाया होगा, कोई जंगल की तरफ शहर से आया होगा। पेड़ के काटने वालों को ये मालूम तो था, जिस्म जल जाएंगे जब सर पे न साया होगा। बिजली के तार पे बैठा हुआ हंसता पंछी सोचता है कि वो जंगल तो पराया होगा। अपने जंगल से जो घबरा के उड़े थे प्यासे, हर शराब, शराब मतलब रेगिस्तान में वो रेत जो पानी के जैसे दिखती है दूर से। अपने जंगल से जो घबरा के उड़े थे प्यासे, हर शराब उनको समुंदर नजर आया होगा। कैफी आजमी साहब का लिखा हुआ एक और ब्यूटीफुल सॉन्ग यहाँ सुनते हैं, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
4: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
3: हाँ मनोज जी मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
4: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है पूरी दिल्ली में। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
3: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
4: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
3: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
4: बोलो।
3: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
4: कौन सा?
3: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
4: अच्छा अच्छा।
3: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
4: कच्चे तेल से गाड़ी चलाऊं?
3: वो पक्का हो जाएगा, मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
4: ओके मतलब ऐसे ही डाल दूं?
3: नहीं नहीं नहीं ऐसे नहीं डालना यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
4: कुकर तो है।
3: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
4: अच्छा
3: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
4: सोडा,
3: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
4: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना खाना बना रहा है?
3: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
4: मतलब उसको पकाऊं?
3: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
4: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क, कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
3: ये काम करो अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना पकाना नहीं है।
4: नहीं नहीं कोई मैं सर्विस नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
3: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
4: चल जाएगी?
3: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
4: अबे कौन बोल रहा तू?
3: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
4: अरे यार ये भी बता दो कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
0: Pirani Jeans with Charu, only on Mirchi.

आपको पता है 1980 की फिल्म कर्ज एक हॉलीवुड मूवी से इंस्पायर्ड है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये मूवी है 1975 की, द री इनकार्नेशन ऑफ पीटर प्राउड। मैंने यूट्यूब पे जाके मूवी देखी, काफी बोरिंग और पका हुआ है, लेकिन मूवी देखते देखते कमेंट्स में मुझे पता चला कि इसी नाम की एक नॉवल भी पब्लिश हुई थी 1973 में। तो ये अमेरिकन मूवी उसकी अडेप्टेशन है। कहां से क्या लिया गया है, क्या कहां से क्या इंस्पायर हुआ है, क्या पता है? ऐसा ही है, जीवन में जितना कर्ज उतारते जाओ और चढ़ता जाता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: only on Radio Mercy, New York. It's hot.
1: पुराने जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

शंकर जयकिशन की जोड़ी के जयकिशन साहब बहुत ही फन लविंग, पार्टी लविंग, फ्लैम्बॉयंट किस्म के इंसान थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। उन्हें खाने पीने का बहुत शौक था, खास करके पीने का। वो बहुत ड्रिंक करते थे और इसी वजह से, एक्सेसिव ड्रिंकिंग की वजह से उन्हें लिवर की बीमारी हो गई और बहुत ही कम उम्र में, ही वॉज जस्ट 41 ईयर ओल्ड, उनकी डेथ हो गई। ऐसा भी कहा जाता है कि मिड 60s में शंकर जयकिशन के बीच में जो डिफरेंसेस आए, उनकी दोस्ती में जो दरार आई, उससे भी वो बहुत हर्ट हो गए और ज्यादा ड्रिंक करने लगे। ये भी तो होता है ना यार, जिन रिश्तों में गहराई होती है चोट भी वहीं गहरी लगती है। 1971 में जयकिशन साहब की डेथ ने शंकर साहब को तोड़ दिया। वो म्यूजिक बनाते थे लेकिन उनका मन नहीं लगता था। जयकिशन साहब की डेथ के बाद जितने भी गाने उनके रिलीज हुए उसमें म्यूजिक कंपोजर नाम शंकर जयकिशन ही जाता था। वो एक ऐसी जोड़ी थी कि उनके डिफरेंसेस ने उनको अलग करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए।

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।

0: सत्ते पे सत्ता फिल्म में वो जो सीन है ना, जो बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और बड़ा हार्ट ब्रेकिंग भी है।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वो सीन जिसमें अमजद खान अमिताभ बच्चन को ड्रंक कर देते हैं उनसे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए और फिर बाद में उनको किडनैप कर लेते हैं, हाय हाय बड़ा दुख होता है यार। हाँ, कमिंग बैक टू द सीन, तो वो सीन जिस घर में शूट हुआ है ना, वो जो घर दिखाया गया है, इट इज द सेम हाउस जो अमिताभ बच्चन साहब का घर है जलसा। और सत्ते पे सत्ता फिल्म की जब शूटिंग चल रही थी तभी इस घर को खरीदा गया था, बच्चन जी ने खरीदा था सिप्पी साहब से ये घर, एनसी सिप्पी जो फिल्म मेकर सिप्पी फैमिली है उनसे। और ये भी सुनने में आता है कि इस फिल्म की जो अमिताभ बच्चन की फीस थी उसको उस घर के अगेंस्ट एडजस्ट कर लिया गया था कि आप फिल्म में काम कर लो और घर ले लो और आप हमसे यहाँ पे ब्रेक ले लो। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vid vala burga.
1: Milci, burga. Hello? Hello?
2: Sir, very good evening, man. Thanks a lot.
1: हाँ बोलिए
2: सर. I'm so sorry सर, but सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
1: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं, क्या
2: बात है सर, I'm so sorry, पूरा बताइए
1: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
2: सर आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
1: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
2: I'm so sorry सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
1: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
2: I'm so sorry सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
1: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
2: I'm so sorry सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
1: पागल पागल है क्या?
2: अब तो देने पड़ेंगे सर.
1: हेलो.
2: अब तो फंस गए देने पड़ेंगे.
1: कौन बोल रहा है? विपिन?
2: नहीं सर, सोचा अब तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
1: पागल के दिमाग खराब है क्या? पैसे देने पड़ेंगे,
2: अब तो फंस गए सर.
1: हेलो
3: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ सर. आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है.
1: उसके पैसों को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
3: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे. आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
1: मतलब ये पक्की बात है आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
3: हाँ जी. अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. It's hot.

0: Zvončík.
1: Na चुस्कियों में, na सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na virtua la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ।
2: हाँ जी, हेलो।
3: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है, सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाते हैं, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है।
3: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 3rd K 35/14A 1st floor। तो इंटरनेट चलता नहीं है ऊपर से, मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
2: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
2: मेरा सनशाइन कैंसिल है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला,
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
3: मैडम, ये इंटरनेट का कनेक्शन है। आप मेरे को क्यों बता रहे हो, ब्लड ग्रुप बताइए।
2: बी पॉजिटिव, 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा। और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता तो दो।
3: तो मैं आपको, अरे मैडम
2: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल थोड़ी
3: जी। आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: यार
3: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं,
3: दोबारा कॉल करेंगे। आपका वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
1: हिट हिट हिट हिट गाना, हिट गाना, हिट गाना।
0: Radio Mirchi, New York. It's hot.

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना क्या सच में पॉजिटिविटी है या फोर्स्ड पॉजिटिविटी, आइए इसे समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, हाल फिलहाल में इस शो के बारे में कई लोग मुझे बताते हैं, इस बारे में बात करते हैं, और दे मोस्टली ज्यादातर जो लोग हैं वो पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं कि भाई ये बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने शुरू किया है, इससे हमें बहुत फायदा मिल रहा है, तो कूडोस टू यू एंड थैंक्स टू यू। लेकिन एक मुझे महिला मिली और वो बहुत परेशान सी थी और उन्होंने बहुत सारे नेगेटिव फीडबैक मुझे दी, और जब वो बात कर रही थी तो मुझे एक बहुत प्यारी सी फिल्म आई थी गमन बोल के, 1978 में शायद आई थी, फारूक शेख थे उसमें, और उसमें शहरयार साहब ने बहुत कमाल का एक गाना लिखा था, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। और वो कह रही थी कि ये जो फोर्स्ड पॉजिटिविटी जो तुम करते हो ना, कि हर चीज में पॉजिटिविटी घुसाना है, ऐसा होता नहीं है जिंदगी में, ऐसा नहीं होता कि जिंदगी में परेशानियां आती हैं, हर चीज में पॉजिटिव रहो, ऑप्टिमिस्ट रहो, उम्मीद पर दुनिया कायम है, बहुत हो गया तुम्हारे नाटक, ये फोर्स्ड पॉजिटिविटी कब तक चलाओगे और असली बात कब करोगे। तो जब उसने मुझे बोला, मैं उससे बात कर रहा था, फिर मैंने रियलाइज किया कि वो सुनने के उससे नहीं आई है, वो मुझे सुनाने के लिए आई। तो मैं सुनता रहा, लेकिन मैंने सोचा कि ये बात आपसे जरूर पूछूंगा कि जब ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होती है तो क्या कहना चाहिए।
4: अगर कोई नहीं सुनना चाहता तो हम उनकी सुने, वो भी एक प्रकार से सेवा हो जाती है, क्योंकि उसको कहते हैं कंपैशनेट लिसनिंग।
3: जी,
4: जब कोई बहुत बोल रहा होता है तो भी वो अंदर भरा होता है, कई बार दर्द में भी होता है, सप्रेस्ड भी होता है, वो सुनाना चाहता है।
3: जी।
4: अगर हम अच्छे से उसकी बात सुन लेते हैं, सी मोस्ट ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस, कई बार हम सुन रहे होते हैं और वेट कर रहे होते हैं
3: जवाब देने का।
4: तो एक्चुअली हम पूरी उसकी भावना को नहीं अब्सॉर्ब कर पाते हैं, वर्ड सुन रहे होते हैं पर भावना में ये होता है कि सामने वाला परेशान है। आपको पता चल रहा होता है कि वो दर्द में है, वो परेशान है, तो उस समय कभी कभी अगर आपके शब्द हील ना करें, आपका वाइब्रेशन हील करता है।
3: अच्छा।
4: और आपके वाइब्रेशन में क्या होता है, ये थॉट होने के जगह ये कैसे लोग हैं, ये कैसे अजीब लोग हैं, ये सुनना तो चाहते नहीं, ये बदलना तो चाहते नहीं है, तो ये भी तो एक प्रकार से नेगेटिविटी है।
3: तो होना चाहिए कि इनका भी भगवान भला करे।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: The number one cause of lag over time is clutter and cached files that silently eat your SSD speed.
1: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi.
0: Storage.
1: It's hot.
2: जब सिचुएशन आपके कंट्रोल में ना हो, तब अपने रिएक्शंस को संभालना इतना जरूरी क्यों होता है? आइए जानते हैं।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा, मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ। मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी, सिस्टर
4: श्रेया। हम सबके साथ कभी कभी होता है कि वो बातें एक्चुअली राइट होती हैं, पर उस समय हम इसे समझ नहीं आते या हम समझना नहीं चाहते हैं। It's very easy to shift responsibility.
0: Go to graphics.
4: कोई force positivity की बात नहीं है, responsibility उठाने की बात है
0: settings,
4: कि situation तो आपके control में है नहीं, लेकिन
0: for
4: कैसे
0: Windows
4: respond
0: games,
4: करना है वो तो आपके control में है। अगर आप
0: faster
4: हर scene और हर situation को positively respond कर रहे हैं, तो ये तो बड़ी achievement है। ये force positivity
0: Windows
4: कैसे हुई?
0: 20% of CPU time for background services.
4: क्योंकि
0: if heavy
4: situation
0: user, that's wasted
4: और जो आपका
0: power,
4: response है,
0: type regulate
4: उसके बीच
0: and
4: में बहुत
0: enter.
4: ही कम गैप है।
0: Navigate
4: It is
0: to this path,
4: matter of
0: H key local
4: a second
0: machine,
4: or few seconds,
0: system.
4: पर वो आपकी quality of life decide
0: Current
4: करता
0: control
4: है।
0: Set. Control.
1: Priority control. Mantra with Vishal Setia
0: right
1: and
0: click,
1: Brahma
0: new
1: Kumari,
0: word,
1: Sister
0: 32-bit
1: Shreya.
0: Value.
1: Only on Mirchi. It's
0: Unit
1: hot.
0: System responsiveness. Double click and set value data equals 0. All CPU scheduling now favors your active apps, increase

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या सिचुएशन हमारे थॉट प्रोसेस और इमोशनल स्टेट को डीपली अफेक्ट कर सकती है, आइए समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, कभी कभी क्या होता है कि जब बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं जिंदगी में, ज्यादातर वो चैलेंजिंग सिचुएशंस होते हैं या आपने कभी फेस नहीं किए होते, तो सिचुएशंस जो हैं वो आपकी थॉट प्रोसेस को बहुत अफेक्ट करता है। तो कभी कभी जब लोगों से मैं बात करता हूँ और मिलता हूँ, वो कहते हैं कि भैया ऑप्टिमिज्म जो है, पॉजिटिविटी जो है, जो इटर्नल पॉजिटिविटी है, सनशाइन है, ये बहुत अच्छी बातें हैं, होनी भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कोर मुद्दे को नज़रअंदाज कर दें, उसके बारे में बात ही ना करें। तो कभी कभी ये जो फोर्स्ड पॉजिटिविटी है जो थोपा जाता है या उनको लगता है थोपा जा रहा है, उससे असल बातों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा होता, उसका सोल्यूशन नहीं हो रहा होता। उनका कहने का मतलब ये भी है कि फोर्स्ड पॉजिटिविटी के कारण जो असल मुद्दे उनके बारे में तो बात ही नहीं हो रही।
4: मैंने कई बार सिनारियों में ऐसा लगता है कि अगर हमें मुद्दे पर बात करनी है तो जरूरी है गुस्सा करें, चीखें, चिल्लाएं, अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो शायद कोई चेंज नहीं आएगा। क्योंकि जो इमीडिएट इंस्टेंट चेंज कई बार देखने में आ जाता है वो फियर से होता है।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: क्या फियर सिर्फ डर नहीं बल्कि ग्रोथ और एक्शन की वजह भी बन सकता है, आइए इसे डीपली एनालाइज करें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: चाहे एक घर में भी एक पेरेंट है, प्यार से कोई काम नहीं हो रहा तो वो सोचता है मैं थोड़ा सा आवाज ऊंचा करूं, फियर क्रिएट होगा तो बच्चा पढ़ने बैठ जाता है, ऑफिस में भी काम हो जाता है। यू यूज फियर एज अ वेपन टू गेट थिंग्स डन एंड सडनली यू फील एक बिलीफ सिस्टम बैठ जाता है कि ये तरीका काम करता है। वो तरीका काम करता है, आपका काम हो जाता है, लेकिन कितने समय के लिए,
3: बहुत शॉर्ट टर्म होता है।
4: जब तक वो सामने वाला जो है, आप एक तरह से तो किसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं,
3: दबा रहे हैं, वो जब तक दब रहा है
4: कमजोर को ही कर सकते हैं। आज वो बच्चा बड़ा हो जाता है, आप कितना भी चीख लो, कितना भी चिल्ला लो, कितना भी गुस्सा कर लो, बिल्कुल नहीं सुनेगा, और वो रिश्ता इतना खराब हो जाता है कि अगर उसको पता भी हो ना कि आप जो कह रहे हैं वो राइट है, तो भी वो केवल आपको हर्ट करने के लिए उसका उल्टा करता है। सो इन अ लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स अगर आप देखें, हम सबको चेंज लेकर आना है, लेकिन वो जो गांधी जी कहते थे, बी द चेंज दैट यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड। If you want to see a peaceful change in the world, I personally feel कि वो without compassion, without peace आ नहीं सकता। When we talk about peace and love, it doesn't mean कि हम passive होते जा रहे हैं। It only means कि हम कोई भी कर्म करने से पहले उसके बारे में बहुत गलत सोचने से, आज मुझे अगर किसी चीज पर आवाज भी उठानी है
3: जी,
4: मुझे किसी इनजस्टिस के लिए फाइट भी करना है, तो मुझे उसके लिए या व्यक्ति के लिए या उस परिस्थिति के लिए गलत सोचने से क्या होगा।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

मुझसे ना हो पाएगा। कौन बोला

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: सब ठीक हो जाएगा। क्या ये सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि एक पावरफुल माइंड शिफ्ट है? आइए समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, आई थिंक जिस बारे में बात हो रही है वो जो फोर्स्ड ऑप्टिमिज्म है, फोर्स्ड पॉजिटिविटी है, आई थिंक द वे What this lady was trying to tell me, जिससे मैं बात कर रहा था, वो ये था कि कभी कभी क्या होता है, बहुत लोग ना सोल्यूशन तो नहीं दे पाते या डिबेट डिस्कशन में नहीं पार्टिसिपेट कर पाते, लेकिन उन्होंने जो सीखा होता है वो है कि सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो इसके अलावा वो कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते।
4: मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है
3: जी।
4: आप जब कहते हैं ना सब ठीक हो जाएगा, कभी कभी ओवर थिंकिंग इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है, और कभी कभी एक पॉजिटिव थॉट्स इतने पाथवेज खोल देता है कि हमें पता नहीं चलता।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: क्या सिर्फ अकम्प्लिश्ड होना ही लाइफ में हैप्पीनेस की गारंटी है? आइए इस कॉन्सेप्ट को समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: मुझे याद है मैं एक दूसरे शख्स से बहुत सालों पहले मिल रहा था और मैं जनरली बोल रहा था, वो बहुत कंप्लेन कर रहे थे कि ऐसा है ऐसा है, तुमको नहीं पता इस इंडस्ट्री में ये होता है वो होता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, सब सही हुआ है। तो झड़प गए मुझ पे, बोल रहे तू क्या पोडियम में, सब ठीक हो जाएगा, तुम हो या मैं हूँ, मैं बता रहा हूँ तुमको ये प्रॉब्लम है, तुमको समझ नहीं आ रहा, बात मत करो यहाँ से निकल जाओ यहाँ से। तो उन्होंने सबके सामने मुझे ऐसे झाड़ दिया, बहुत सीनियर दिग्गज इंसान थे, काफी अकम्प्लिश। उनको देख के मुझे बड़ा अजीब लगा क्योंकि मैं दूसरी या तीसरी बार ही मिला था और मेरे लिए बहुत अकम्प्लिश्ड, बहुत एक ओहदे पे हैं वो, तो मुझे लगा ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन ये बात उस बात से भी मैच करती है कि प्रॉब्लम तो है और तुम बोल रहे ठीक हो जाओ, कैसे ठीक हो जाएगा।
4: सी, पहली बात तो अकम्प्लिश्ड होना सिर्फ यही नहीं होता कि आप एक ओहदे पर हैं
3: जी,
4: अकम्प्लिश्ड इमोशनल स्टेट भी बताती है कि आप कितने जीवन में अकम्प्लिश्ड हैं। कभी कभी अगर आप हर चीज में घबरा जाते हैं, फियर में आ जाते हैं, इनसिक्योर हैं, बात बात पर गुस्सा करते हैं, बात बात पर अपसेट हो जाते हैं, आप फाइनेंशियली अकम्प्लिश्ड हो सकते हैं, आप पोजिशन में अकम्प्लिश्ड हो सकते हैं, पर इमोशनली तो आप वीक ही है ना। और किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए इमोशनली स्ट्रांग होना जरूरी है। आज उस इंटेलिजेंस से ज़्यादा वैल्यू इमोशनल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की है, क्योंकि वर्ल्ड अनसर्टेन है। स्किल आप फिर सिखा सकते हैं किसी को, आप मेहनत करके किसी को स्किल सिखा सकते हैं, आप स्टेबिलिटी नहीं सिखा पाते
3: जी।
4: हम ये नहीं कहते कि मुद्दे के ऊपर बात नहीं करो या उसका सामना नहीं करो, पर एक होता है पहले अपने को रिस्पॉन्सिबिलिटी, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, पहले खुद तो स्टेबल रहे, उसके बाद जो भी समस्या उसका समाधान तो करना ही है। एंड दैट कुड मीन अ टफ कॉन्वर्सेशन, दैट कुड मीन अ टफ डिसीजन, बट आप उसको रिस्पेक्टफुली भी तो कर सकते हैं ना। वहीं पर जब हम थोड़े से ऊपर नीचे हो जाते हैं, आप वही कॉन्वर्सेशन करेंगे पर आप किसी को डिसरिस्पेक्ट कर देंगे, आप वही कॉन्वर्सेशन करेंगे पर आप किसी को रिजेक्ट कर देंगे। सो टू डू थिंग्स विद डिग्निटी, टू डू थिंग्स विद ग्रेस, टू डू थिंग्स विद कंपैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: gets hot.
1: Healthy mind के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते. Till then, सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 only on मिर्ची. It's hot.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: React करने के बजाय wisely respond करने की ability कैसे develop करें? आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: हम ये नहीं कहते कि मुद्दे के ऊपर बात नहीं करो या उसका सामना नहीं करो, पर एक होता है पहले अपने को रिस्पॉन्सिबिलिटी एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, पहले खुद तो स्टेबल रहे, उसके बाद जो भी समस्या उसका समाधान तो करना ही है। एंड दैट कुड मीन अ टफ कॉन्वर्सेशन, दैट कुड मीन अ टफ डिसीजन, बट आप उसको रिस्पेक्टफुली भी तो कर सकते हैं ना। वहीं पर जब हम थोड़े से ऊपर नीचे हो जाते हैं, आप वही कॉन्वर्सेशन करेंगे पर आप किसी को डिसरिस्पेक्ट कर देंगे, आप वही कॉन्वर्सेशन करेंगे पर आप किसी को रिजेक्ट कर देंगे। सो टू डू थिंग्स विद डिग्निटी, टू डू थिंग्स विद ग्रेस, टू डू थिंग्स विद कंपैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
0: Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर ब्रजेश वडोदरा से लिखते हैं कि नमस्ते, मैं रेडियो मिर्ची और श्रेया दीदी का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ। आप दोनों को ढेर सारा प्यार। हम अपने बच्चों को स्पिरिचुअलिटी की ओर कैसे प्रोत्साहित करें? जब हम सतयुग की बात करते हैं तो बच्चे तर्क देते हैं कि मशीन या मेहनत के बिना कुछ भी बनाना संभव नहीं है, तो केवल विचारों से सृष्टि कैसे हो सकती है?
3: देखो, जब हम बच्चों को स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो बच्चों के लेवल पर आकर के करनी चाहिए। पहली बात तो बच्चों के लेवल पर आने का मतलब ये है कि आप अगर चाहेंगे कि वो डेली स्पिरिचुअल क्लास अटेंड करें, हो सकता है शायद वो उतने इंक्लाइंड नहीं हो
2: जी।
3: कुछ दिन पहले मैं एक पेरेंट के साथ मिली थी, तो उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों के साथ लेकिन 10 मिनट जरूर बैठते हैं।
2: हाँ।
3: कुछ अच्छी बातों के ऊपर डिस्कशन जरूर करते हैं।
2: हाँ।
3: और एक हमारा कॉमन प्रैक्टिस है घर के अंदर कि अब बच्चों को हैप्पी मोमेंट जरूर लिखना है।
2: अरे वाह, क्या
3: वो दोनों स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, हस्बैंड वाइफ, और वो बच्चों को रोज, तो बच्चों को भी आदत पड़ गई है कि कितने भी थके हुए होंगे, उनके वाइफ सुना रही थी कि वो बच्चे कितने भी थके हुए होंगे
2: लेकिन वो लिखेंगे जरूर,
3: उनको पता है कि पापा ने पूछना ही है। और वो सिंगर है, खरीश मोयल सिंगर है, उनके डॉटर नित्या मोयल एक्टर है, बिजी है, वो लोग परफॉर्म करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर उनके घर का नियम है, ये उनकी पेरेंटिंग है कि रात को आपको अपना हैप्पी मोमेंट आकर लिखना ही है। तो कहते बच्चों के अंदर भी अभी ये कॉन्शियसनेस है सारे दिन के अंदर कि जाकर के कोई हैप्पी मोमेंट लिखना है, तो मोमेंट दिन में होना भी तो चाहिए ना। तो वो दिन भर में अवेयर होते हैं कि मुझे सब कुछ हैप्पीली करना है तो मैं अपने मोमेंट्स के अंदर लिख सकूं। अब वो कल्चर है घर का, तो कल्चर है कि जब आपको लिखना है तो फिर आपको करना भी पड़ेगा। सो दे हैव स्टार्टेड लिविंग देयर लाइव्स विद लॉट ऑफ हैप्पीनेस,
2: वेरी नाइस,
3: एंड नाउ दे लुक फॉरवर्ड टू इट। दे लुक फॉरवर्ड कि हम एक दूसरे को बताएं कि हमारे दिन का हैप्पी मोमेंट क्या था। तो बच्चे हैं, बच्चे के लेवल पर जाना पड़ेगा। सेकंड, आई रिमेम्बर दिस मदर शेयरिंग कि जब भी वो टिफिन पैक करते हैं तो वो एक स्लिप पेपर के ऊपर कोई एक अच्छी बात, कोई एक अच्छी स्टोरी, कुछ एक अच्छा उसके अंदर लिख कर देते हैं। अब वो जो बच्चा है, नाउ ही लुक्स फॉरवर्ड टू इट, धीरे धीरे, जैसे वो चिकन सूप की हमारी किताबें हुआ करती थी, वो बहुत स्पिरिचुअली एम्पावरिंग होती थी। पर कोई एक स्टोरी अगर आपको पता है कि आपको रोज मिलने वाली है, अब कहते बाकी बच्चे पहले देखते थे टिफिन में क्या आया है,
2: अब वो देखते मेरे टिफिन में क्या आया है,
3: अब वो मेरे में क्या, हाँ, क्या स्टोरी है, उस चीज का सबको इंतजार होता है। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कुछ ऐसी बातें जो आपको पॉजिटिव बना रही है, कुछ ऐसी बातें जो आपके अंदर पीस, हैप्पीनेस, कंपैशन, फॉरगिवनेस क्रिएट कर रही है, वो स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम फिलॉसफी और इन सब चीजों की बात करें, अच्छी अच्छी बातें सुनना, देखना, पढ़ना, उसकी एक आदत पढ़ना, वो स्ट्रांग होंगे। अगर हम कहीं स्पिरिचुअली डीप एस्पेक्ट नहीं समझ पाते हैं तो हमारी बुद्धि वहां तक डेवलप नहीं हुई होती है। जैसे अगर एक स्कूल के बच्चे को आप इंजीनियरिंग के क्लास में बिठा दें तो वो जो वहाँ पर सुना रहे हैं वो गलत नहीं है, बच्चे की बुद्धि उतनी डेवलप नहीं हुई होती है। कई स्पिरिचुअल जो बातें होती हैं डीप होती हैं, उसके अंदर तर्क होता है, उसके अंदर रैशनैलिटी होती है, उसके अंदर कुछ लॉजिक होता है, पर मे बी आई एम नॉट उतना बुद्धि से डेवलप कि उसको समझ सके। अब उसको आप जबरदस्ती उसमें समझाने की कोशिश करेंगे या आर्ग्यू करेंगे तो उनका मन फिर जो अच्छी बातें हैं उससे भी उठ जाता है। इसलिए गो स्लो, जहाँ ए समझना है वहाँ ए समझना है, जहाँ एप्पल समझना है वहाँ एप्पल समझना है। तो ये भी नर्सरी से लेकर इंजीनियरिंग तक एक स्लो प्रोसेस है ना।
2: वेरी नाइस।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: देखो मेरी अलार्म क्लॉक ना ऑफिशियली रिजाइन कर चुकी है, बिकॉज मिर्ची मॉर्निंग्स इज नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेकिंग एवरीवन अप, जिसमें ढेर सारी मस्ती म्यूजिक मच मोर होता है। गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में आ चुकी हूँ लेकर तुम्हारा फेवरेट मॉर्निंग शो। यहाँ पर कॉफी से ज्यादा गर्म होती है गॉसिप और ट्रैफिक से ज्यादा फास्ट होता है बॉलीवुड का तड़का। जैसे मुझे पता है सम ऑफ यू आर लिसनिंग व्हाइल प्रिटेंडिंग टू वर्क, सम व्हाइल पैकिंग लंच बॉक्सेस, एंड सम आर जस्ट सिटिंग इन द कार आउटसाइड द ऑफिस थिंकिंग बस 5 मिनट और उसके बाद ऑफिस में एंट्री मारना है। वैसे फिलहाल तुम इनमें से जो कुछ भी कर रहे हो या कुछ नहीं कर रहे हो, डोंट यू वरी, अगले कुछ घंटों तक मैं और तुम मिलकर करेंगे फुल ऑन रिचार्ज आज के दिन को और ज्यादा मिर्चीदार बनाएंगे इस दिन को विद अ लॉट ऑफ गॉसिप गपशप म्यूजिक मस्ती एंड मच मोर। अभी आने वाले हैं मिर्चीदार बैंगर्स जस्ट फॉर यू। मेरा नाम है प्रिसिला, मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647224। Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana.
2: Rambala.
1: Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirchi, murga.
3: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
4: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
3: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
4: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है पूरी दिल्ली में। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
3: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
4: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
3: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
4: बोलो।
3: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
4: कौन सा?
3: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
4: अच्छा अच्छा।
3: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
4: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ,
3: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
4: ओके, मैं ऐसे ही डाल दूं?
3: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
4: कुकर? हाँ कुकर तो है।
3: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
4: अच्छा।
3: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
4: सोडा,
3: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
4: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो खाना बना रहा है?
3: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
4: मतलब उसको पकाऊं?
3: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सिटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सिटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सिटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
4: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा, रिस्क कौन लेगा, ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
3: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है।
4: नहीं नहीं कोई मैं सर्विस नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
3: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
4: चल जाएगी?
3: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
4: अबे कौन बोल रहा है तू?
3: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
4: अरे यार ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स। अपना चाय कॉफी ब्रेकफास्ट लेकर तैयार हो जाओ क्योंकि हम चलने वाले हैं टाइम ट्रैवलिंग के लिए। सबसे पहले चलते हैं 1739 में, बैटल ऑफ करनाल। नादेर शाह ने मुगल आर्मी को डिफीट किया एंड इवेंचुअली कोहिनूर डायमंड भी ले गए। देन 1896 में चार्ल्स डाओ लॉन्च द डाओ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। आज जिस स्टॉक मार्केट को देखकर लोग बाय लो सेल हाई बोलते हैं, उसी की शुरुआत यहां से हुई थी। 1940 में डंकर्क इवैक्यूएशन बिगान ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। ओवर 338,000 सोल्जर्स वर रेस्क्यूड अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। 1972 में यूएसए एंड सोवियत यूनियन साइंड द एबीएम ट्रीटी to control nuclear missile system during the Cold War. And then, proud desi moment, 1999 mein Indian Air Force launched Operation Safed Sagar during the Kargil War. वैसे तुम्हें अगर more fun facts पता है तो मुझे directly message कर सकते हो Insta और X पर। मेरा handle name है Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp पर मेरा number है 9033 Mirchi, that's 9033 647244. Stay tuned and stay hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। और यहाँ पर चाय गर्म होती है, गॉसिप गर्मा गर्म होती है। एंड टुडेज मसालेदार अपडेट कम्स स्ट्रेट फ्रॉम बी टाउन। एक्टर रणवीर सिंह हैज रिपोर्टेडली बीन बैंड बाय द फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉयज, दैट्स ट्वाइस आफ्टर द डॉन 3 ड्रामा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रणवीर अलेजेडली एग्जिटेड डॉन 3 जस्ट डेज बिफोर फिल्मिंग वॉज सपोज टू बिगिन। और प्रोड्यूसर डायरेक्टर फरहान अख्तर अलॉन्ग विद प्रोड्यूसर रितेश सिद्धवानी फ्रॉम एक्सेल एंटरटेनमेंट रिपोर्टेडली सेड कि प्री प्रोडक्शन पर काफी पैसे और प्लानिंग ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं, बिकॉज दे वर काउंटिंग ऑन रणवीर सेइंग यस। अब रणवीर की साइड भी आ गई है। थ्रू हिज स्पोक्स पर्सन ही सेड ही हैज ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर द डॉन फ्रेंचाइज एंड वांटेड टू मेंटेन साइलेंस बिकॉज प्रोफेशनल डिस्कशन एंड पर्सनल इक्वेशंस आर बेस्ट हैंडल्ड विद डिग्निटी। ट्रांसलेशन, बॉलीवुड वर्जन ऑफ मैं चुप हूँ बट क्लासी हूँ। ऑनेस्टली डॉन 3 की कास्टिंग अपडेट्स आर चेंजिंग फास्टर देन देसी पीपल चेंजिंग वेडिंग आउटफिट्स। एट दिस पॉइंट इवन गूगल कैलेंडर इज कंफ्यूज। लेकिन फैंस जो है वो ऑनलाइन डिवाइड हो चुके। कुछ लोग कह रहे हैं कि कमिटमेंट मैटर्स एंड कुछ दूसरे लोग कह रहे हैं क्रिएटिव डिसीजंस हैपन। मीनवाइल हम यहाँ पर बस पॉपकॉर्न लेकर रिफ्रेश का बटन दबा रहे हैं। जैसे ही कुछ आगे की अपडेट आती है मैं तुम्हें बताती रहूंगी। तब तक तुम ये पता कर लो मुझे फॉलो कैसे करना है। इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल मिर्ची दर बैंगर्स का टाइम है। स्टे

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hola my people, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। This is Mirchi Mornings पर अब वेदर का हाल चाल जानने का टाइम। So listen up, right now it's around 70 degrees Fahrenheit and it's pretty sunny which sounds cute and innocent, लेकिन emotionally attached मत हो जाना वेदर से, क्योंकि afternoon आते आते temperature जो है वो climb करने वाला है। It's gonna go up to 95 degrees Fahrenheit. And not that you need that information today, but आज के दिन पिछले 24 घंटों की तरह zero precipitation है, यानी कि बरसात का नामो निशान नहीं है। It's going to be dry cleaning weather type का दिन। And later you'll get partly cloudy skies around 4 PM, लेकिन honestly those clouds are just there for moral support. So heads up, आज heat advisory भी है in effect till Wednesday evening, which means you gotta hydrate yourself like your life depends on it, because honestly it kind of does. Carry your water, carry your sunscreen and please carry me, बोले तो प्रिसिला, with you on Mirchi Mornings। और अभी फटाफट से मुझे follow करो Insta और X पर, मेरा handle name है Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS। WhatsApp पे मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल चपक के बैठो यहीं पर, स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना, मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: सुमन जी, गुड इवनिंग। इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
3: हाँ जी, हाँ जी।
4: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
3: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
4: होल्ड कर रहा हूँ।
3: हाँ जी, हेलो।
4: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
3: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
4: कनेक्ट नहीं हो पाता है? सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
3: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाते हैं, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
4: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
3: है 35/14A फर्स्ट फ्लोर नगर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
4: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
3: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
4: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
3: मेरा सनसाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला है।
4: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
3: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
4: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
3: बी पॉजिटिव, दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
4: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
3: राहुल शर्मा। ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
4: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
3: आपसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल
4: सुमन जी आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हमें? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
3: क्या
4: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
5: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
3: नहीं,
4: दोबारा कॉल करेंगे आपका वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग मेरे देसी दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, नाम है प्रिसिला सुट्रित मिर्ची मॉर्निंग्स, और काफी मिर्चीदार न्यूज बताती हूँ तुम्हें। इन थाईलैंड था लुआंग एरिया मेल पुलिस ऑफिसर्स लिटरली ड्रेस्ड अप एज फीमेल डांसर्स टू कैच अ ड्रग सस्पेक्ट एंड द इंटरनेट हैज लॉस्ट इट। मतलब यार अंडर कवर ऑपरेशन तो सुना था, बट दिस इज फुल ऑन ऑस्कर वर्दी कमिटमेंट। पिक्चर वायरल हुआ है, द सस्पेक्ट आइडेंटिफाइड एज मेखा फावॉप वॉप, यस दैट्स अ रियल नेम एंड नो your radio did not glitch, was reportedly caught with some illegal pills, hundreds of small plastic bags and mobile phones. Police say these creative disguises have actually been used before too. Honestly, somewhere in the background, Bollywood directors are probably yelling, script likho yaar, Akshay Kumar ko phone lagao. Lekin jokes apart, social media is obsessed because the officers fully committed to the look and desi aunties everywhere are probably saying, eyebrows bhi achhe kiye. And imagine being the suspect for one second. You think you're meeting dancers and suddenly, surprise, surprise, it's law enforcement. Talk about plot twist of the year. Actually, of the century. वैसे, if you love bizarre world news, मैं तुम्हें देती हूँ on Mirchi Mornings. मेरा नाम है Priscilla. मुझे follow भी कर लो. Insta और X पे मेरा handle name है Mirchi Pris. That is MIRCHIPRIS. And WhatsApp पे मेरा number है 9033 Mirchi. That's 9033647244. फिलहाल मिर्ची दार bangers का time है. Stay tuned and stay hot.

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey there, my birthday babies. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. This is of course मिर्ची मॉर्निंग्स and exclusively right here, right now. It's birthday time. Happy birthday to you. आज का दिन फुल स्टार स्टडेड होने वाला है because you share your birthday with some pretty iconic names like rock star legend Lenny Kravitz. मतलब कूलनेस लेवल ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है इनके नाम से. देन देयर इज लॉरेन हिल हुज म्यूजिक स्टिल हिट्स हार्डर देन मंडे मॉर्निंग अलार्म क्लॉक. एंड देसी साइड पे यू शेयर योर बर्थडे विद द वन एंड ओनली दिलीप जोशी एके आवर फॉरएवर जेठालाल. ऑनेस्टली इफ यू इनहेरिटेड इवन 2% ऑफ हिज कॉमिक टाइमिंग योर फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी लव्स यू. सो बेसिकली अगर आज के दिन तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है तो कॉम्बिनेशन में आता है म्यूजिक, ड्रामा, स्टाइल एंड कॉमेडी. ये सब कुछ से भरपूर है आज के दिन प्रकट होने वाले लोग, वो भी इस धरती पर. एंड अगर तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे किसी फ्रेंड लव्ड वंस का हैप्पी बर्थडे है तो मुझे शाउट आउट भेज सकते हो. आई विल टेक देयर नेम ऑन एयर राइट हियर राइट नाउ ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. मेरा हैंडल नेम है इंस्टाग्राम और एक्स पर मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 Mirchi, that's 9033-647-244. Stay tuned and stay hot.
2: New York में लंबी लंबी buildings होती है ना, plane से देखा था.
3: शशि वो Manhattan है.
2: Manhattan.
4: Man, as me. Hat, topi. Or mom, what's tan in Hindi?
3: Tan मतलब वो धूप की छाप.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हे देयर माय गोल्ड लवर्स, मैं हूं प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब हम पता करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर का आज का हाल क्या है।
2: राज जोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,540, $4,540 पर ट्राउंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। गोल्ड के प्राइस अमेरिका में इंडिया से अबाउट 15% चीपर है। जी हाँ, आपने सही सुना, हिंदुस्तान से अमेरिका में गोल्ड के प्राइस सस्ते हैं। कैसे? आइए गोल्ड में इन्वेस्ट करते हुए राज ज्वेल्स के टीम मेंबर से समझें कि किस तरह से 15% गोल्ड का प्राइस अमेरिका में इंडिया से सस्ता है, और गोल्ड में रिस्पॉन्सिबली इन्वेस्ट करें राज ज्वेल्स के साथ। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू यू।
1: एंड देयर यू हैव इट, द लेटेस्ट रेट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मैं हूं प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6 4 7 2 4 4. Stay tuned and stay hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स और अब टाइम है अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स का। सबसे पहले, द यूएस मिलिट्री हैज कैरिड आउट व्हाट इट कॉल्ड सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक्स इन सदर्न ईरान, टारगेटिंग मिसाइल लॉन्च साइट्स एंड बोट्स लेइंग माइंस नियर बंदर अब्बास एंड द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ऑफिशियल्स सेड द स्ट्राइक्स वर एम्ड एट प्रोटेक्टिंग ट्रूप्स व्हाइल नेगोशिएशंस आर रिपोर्टेडली स्टिल कंटिन्यूइंग। एंड नंबर टू पर, देसी मॉम्स एवरीवेयर आर ऑफिशियली विनिंग। जस्ट डेज आफ्टर 23-year-old तुषार कुमार बिकेम वन ऑफ द यंगेस्ट इंडियन ओरिजिन मेयर्स इन द यूके, his mom Parveen Rani also became mayor. The family moved from Rohtak, Haryana to the UK in 2013, and now both mother and son are making history together. And number three per, Taiwan has reportedly overtaken India in market size despite having a much smaller GDP. Financial experts are discussing how Taiwan's market capitalization has now edged slightly ahead. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour with me Priscilla on Mirchi Mornings. Mujhse connect karo Insta aur X par, mera handle name hai Mirchi Pris, that's MIRCHIPRIS, and WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Nechi.
1: Iscabana, puscabana, sacabana.
2: Rabana.
1: Burga, burga. La virtua, la burga.
2: Nechi, burga.
3: Hello? Hello?
4: Sir, very good evening, man. Bank support.
3: हाँ बोलिए
4: सर. I'm so sorry सर, but सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
3: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं, क्या बात
4: है सर, आप तो सर पूरा बता दीजिए.
3: क्या कह रहे हो भैया, कहाँ क्या हो गया?
4: सर आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
3: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
4: आई एम सो सॉरी सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
3: नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
4: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
3: नहीं, मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
4: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
3: पागल पागल है क्या?
4: अब तो देने पड़ेंगे सर.
3: हेलो.
4: अब तो देने, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे.
3: कौन बोल रहा है? विपिन?
4: नहीं सर, सोचा तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
3: पागल के दिमाग खराब है क्या तेरा? पैसे देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे पैसे.
4: अब तो फंस गए सर.
3: हेलो
4: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है.
3: उसके पैसों को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
4: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप अब भी नहीं समझे. मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
3: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
4: हाँ जी. अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, guys. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. This is Mirchi Mornings पर. Time for stars की बातें सुनने का. Not Bollywood stars, बल्कि आसमानी stars.
2: Mirchi Rashi Zone.
1: एरीज यानी मेष राशि कॉन्फिडेंस फुल पावर में है आज. बस ओवर कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा म्यूट पे रखो. लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू. लकी नंबर इज 19. टॉरस यानी कि वृषभ राशि. आज सीक्रेट्स को सीक्रेट्स ही रहने दो. ओके, ऑफिस गॉसिप्स एक्सीडेंटली लीक मत कर देना. लकी कलर इज ऑलिव ग्रीन. लकी नंबर इज 42. जेमिनी यानी मिथुन राशि. यूनिवर्स बोल रहा है काम डाउन सुपर हीरो. आज रिस्की ड्रामा अवॉइड करो. लकी कलर इज सनसेट ऑरेंज. लकी नंबर इज 8. कैंसर यानी कर्क राशि. लूज सोशल बैटरी टोटली ओके. आज थोड़ा सा इंट्रोवर्ट लग्जरी एंजॉय करो. ब्लैंकेट प्लस चाय इज इक्वल टू हीलिंग. लकी कलर इज पर्ल व्हाइट. लकी नंबर इज 27. लियो यानी सिंह राशि. मेन कैरेक्टर एनर्जी अलर्ट. फ्रेंड्स और टीम वर्क दोनों आज शाइन करेंगे. बस थोड़ा सा लेस मी एंड लिटिल मोर वी करना जरूरी है. लकी कलर इज गोल्ड डस्ट. लकी नंबर इज 3. वर्गो यानी कन्या राशि. स्टॉप वेटिंग फॉर वैलिडेशन फ्रॉम पीपल हु स्टिल टाइप के इन टेक्स्ट. ट्रस्ट योर सेल्फ टुडे. लकी कलर इज लैवेंडर ग्रे. लकी नंबर इज 11. एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची राशि जोन नंबर 1. पार्ट द्वितीय लेकर थोड़ी सी देर में आऊंगी मैं. बोले तो प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग. तब तक तुम ये मिर्ची दैट बैंगर सुनो और मुझे जाकर फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस. दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप करना है मुझे तो नंबर लिखो 9033 मिर्ची. दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

आता है, ना रात को सोया जाता है। उलझा रहता हूँ यादों में, मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना। तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना।

0: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची बनाने वाला है हिट गाना।
1: हिट हिट हिट
0: हिट गाना,
1: हिट गाना, हिट गाना, हिट
0: गाना। Only on Radio Mirchi, New York. It's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: ऑलराइट माय दोस्त, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारी होस्ट। शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स और अब टाइम हो चुका है ऑफिशियली मेरा पेटी पैक करने का, यानी कि यहाँ से टाटा बाय बाय बोलने का। बट बिफोर आई गो, एक स्पाइसी लिटिल हेडलाइन तो बनती है। अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस रिसेंटली टुक अ शार्प जैब एट न्यूयॉर्क सिटीज मैसिव एजुकेशन बजट। वी आर टॉकिंग अ वॉपिंग $43 billion। बेजोस जोक्ड दैट इफ अमेजोन ऑपरेटेड द सेम वे, योर पैकेजेस वुड टेक 6 weeks

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन।

सिंगर मुकेश जी की आवाज में कितनी इनोसेंस है ना, मुझे कई बार उनकी आवाज ऐसे बेबी वॉइस लगती है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो मुकेश जी 10 भाई बहनों में छठे नंबर पर थे और उनकी बड़ी सिस्टर उसको म्यूजिक सिखाने के लिए एक टीचर आते थे और ये छोटे से साथ वाले कमरे में छुप छुप के ये म्यूजिक सेशंस जो है, म्यूजिक क्लासेस जो है, वो देखा सुना करते थे। और तब ये म्यूजिक टीचर ने इनको नोटिस किया और इनको भी अपना शागिर्द बना लिया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
4: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
3: हाँ मनोज जी मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
4: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
3: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
4: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
3: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
4: बोलो।
3: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
4: कौन सा?
3: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
4: अच्छा अच्छा।
3: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
4: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ
3: वो पक्का हो जाएगा, मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
4: ओके मतलब ऐसे ही डाल दूं?
3: नहीं नहीं नहीं ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
4: कुकर तो है।
3: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। कुकर में जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
4: अच्छा
3: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से 1 बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
4: सोडा।
3: हाँ खाने वाला सोडा। नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
4: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो खाना बना रहा है?
3: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
4: मतलब उसको पकाऊं?
3: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
4: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क? कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
3: यह काम करो अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना है, पकाना नहीं है।
4: नहीं नहीं कोई मैं सर्विस नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
3: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
4: चल जाएगी?
3: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
4: अबे कौन बोल रहा तू?
3: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
4: जरा ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
0: Pirani jeans with Charu, only on Mirchi.

अमर अकबर एंथोनी का ये गाना ऋषि कपूर साहब पे पिक्चराइज्ड है, राइट? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, लेकिन इसकी एक लाइन अमिताभ बच्चन साहब पे भी पिक्चराइज्ड है। सो इन द मूवी ऋषि कपूर ये शो परफॉर्म कर रहे होते हैं और अमिताभ बच्चन उनका ये शो देखने आते हैं, और एक लाइन अकबर मेरा नाम नहीं है अमिताभ बच्चन पे पिक्चराइज्ड है। तो इस लाइन को गाने के लिए ना किशोर कुमार को अप्रोच किया गया था, लेकिन वो एक लाइन गाने में इंटरेस्टेड नहीं थे, तो उन्होंने बहुत बड़ी प्राइस कोट की, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिर सोचा कि वो एक लाइन अब रफी साहब ही गा रहे हैं तो उन्हीं की गाई हुई पिक्चराइज कर लेते हैं, तो ये सीन हुआ था। फिलहाल सीन ऐसा है कि मुस्कान को ले जाएं आप कान तक और कान रखें मिर्ची पर, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, साथ ही रखना छोड़ना नहीं, ठीक है।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

क से कैसे हैं आप, अ से अच्छे हैं, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। अब इसे आप सुपरस्टिशन बोल सकते हैं, लकी चार्म बोल सकते हैं। प्रोड्यूसर जे ओम प्रकाश अपनी फिल्मों के नाम अ से रखते थे। फिल्म्स लाइक आपकी कसम, आक्रमण, आशिक हूँ बहारों का, आखिर क्यों, अपनापन, आशा, अर्पण, आदमी खिलौना है, आन मिलो सजना, ये जे ओम प्रकाश साहब राकेश रोशन साहब के ससुर जी थे, ऋतिक रोशन के नाना। और इन्होंने ना एक ही फिल्म बनाई जिसका नाम अ से नहीं शुरू होता था। वो फिल्म भी चल गई थी, ऐसा नहीं कि फ्लॉप हो गई। ये फिल्म थी राजा रानी और इसका ये गाना मुझे आए हाय इतना पसंद है भाई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों, ओनली ऑन मिर्ची।

0: जीनत अमान की कितनी सारी सुपरहिट फिल्में रही हैं, लेकिन उनकी फेवरेट पता है कौन सी रही है? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये रही है 1980 की फिल्म इंसाफ का तराजू। सुनिए इस बारे में उन्होंने एक बार क्या शेयर किया था।
1: बहुत वुमन ओरिएंटेड फिल्म था, एक रिवेंज फिल्म था, एक मोटिवेटेड फिल्म था। आई वाज नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस। मेरी पार्टिसिपेशन उस हद तक रही कि चोपड़ा जी ने मुझसे हम लोगों को इन्वॉल्व कर दिया था और हम लोगों ने अपना दिल से इनपुट दिया उनको और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया और इनकॉर्पोरेट भी किया। मेरी ज़्यादा सेल्फिश रीज़न भी थी बिकॉज आई वाज गेटिंग अ परसेंटेज ऑफ द कलेक्शन ऑफ द फिल्म फर्स्ट टाइम एज एन एक्टर।
0: ये बात थी। वैसे उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म कुर्बानी के पीछे फिरोज खान साहब की धर्मात्मा फिल्म से जुड़ी एक छोटी सी स्टोरी है, सुनिए।
1: उसमें उन्होंने मुझे एक सेकेंडरी रोल ऑफर किया था जिसे मैंने मना कर दिया तो वो मुझसे नाराज हो गए और कुछ फोन पे कुछ उलट सुलट कह दिया जिससे मैं उनसे नाराज हो गई, तो फिर हमारी बातचीत ही नहीं हुई। फिर जब वो कुर्बानी बना रहे थे उन्होंने फोन किया और बोला अब ये सेकेंडरी रोल नहीं है जीनत अमान।
0: तो इस तरह ये कुर्बानी में आ गई और छा गई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

bubble. At the bubble.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।

लता मंगेशकर एंड आशा भोसले सिंगिंग टुगेदर। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ऐसा हुआ है लेकिन बहुत कम हुआ है। दोनों बहनों में बहुत प्यार था लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि उतनी राइवलरी और कंपटीशन भी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि जो गाने लता जी के लिए और किसी वजह से वो नहीं गा पाती थी तो वो आशा भोसले जी को मिल जाते थे, लेकिन जो गाने आशा जी को जहन में रख के कंपोज किए जाते थे, यू नो कैबरे सॉन्ग्स या थोड़े से ज्यादा सेंशुअल सॉन्ग्स, वो फिर लता जी को ऑफर नहीं किए जाते थे बिकॉज वो उस तरह के गाने नहीं गाती थी ज्यादा। बट वट एवर, वी स्टिल हैव सॉन्ग्स जहाँ पे इन दोनों मेलोडी क्वींस ने साथ में गाना गाया है, और ऐसा ही गाना है पड़ोसन फिल्म का, ये वाला जो हम सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सका बना, बना। मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: सुमन जी, गुड इवनिंग। इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
3: हाँ जी हाँ जी।
4: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
3: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
4: होल्ड कर रहा हूँ।
3: हाँ जी हेलो।
4: क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
3: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
4: कनेक्ट नहीं हो पाता है? सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
3: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
4: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
3: है 3rd K 35/14A 1st फ्लोर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
4: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
3: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
4: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
3: मेरा सनसाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला,
4: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
3: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
4: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
3: बी पॉजिटिव, 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
4: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
3: राहुल शर्मा। और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
4: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
3: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल
4: सुमन जी आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
3: क्या
4: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो, मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है, आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
5: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
3: नहीं।
4: दोबारा कॉल करेंगे, आप क्या वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। ए पटा
7: कह दूं तुम्हें
8: हाँ
7: या चुप रहूं
8: ना,
7: दिल में मेरे आज क्या है?
8: क्या है
7: कह

म्यूजिक कंपोजर जोड़ी राम लक्ष्मण मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इन्होंने ज्यादा राजश्रीज की फिल्म्स के लिए म्यूजिक दिया है और इसमें जो राम थे उनका असली नाम सुरेंद्र था, वो भी एक म्यूजिशियन थे, और लक्ष्मण के नाम से विजय पाटिल म्यूजिक कंपोज करते थे। और आपको पता है इन्होंने मिड 70s में ही या अर्ली 70s में म्यूजिक कंपोज करना शुरू किया होगा साथ में, और 1976 में सुरेंद्र पास्ड अवे, उनकी डेथ हो गई, लेकिन उसके बाद भी विजय जो है वो राम लक्ष्मण नाम से ही म्यूजिक कंपोज कर रहे थे। उन्हीं का कंपोज किया हुआ ये गाना सुनते हैं यहाँ पर पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

आओ सुनाए तुम्हें अंडे का फंडा। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। नहीं भाई, वो तो मुझे नहीं पता, मैं तो आपको कुछ शेर व शायरी सुना सकती हूँ, वो भी किसी और की लिखी हुई। रिदा फाजली मेरे पसंदीदा शायरों में से एक, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये लिखते थे और दिल के आर पार हो जाता था इनका लिखा। ये लिखते हैं, ये कैसी कश्मकश है जिंदगी में, किसी को ढूंढते हैं हम किसी में, निकल आते हैं आंसू हंसते हंसते, ये किस गम की कसक है हर खुशी में, चमकती है अंधेरों में खामोशी, सितारे टूटते हैं रात ही में। और ये आगे की दो लाइंस मेरी फेवरेट हैं, बहुत मुश्किल है बंजारा मिजाजी, सलीका चाहिए आवारगी में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट
1: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: दिल देना सीखो जी।
1: म्यूजिक कंपोजर उषा खन्ना जी मात्र 18 साल की थी जब उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। 1959 की दिल देके देखो, और ये फिल्म जब वो थिएटर में देखने गई थी तब का किस्सा उन्होंने एक इंटरव्यू में शेयर किया था, सुनिए।
2: जब पिक्चर लगी दिल देके देखो तो मैं बहुत छोटी थी, तो मैंने कहा जाके थिएटर में देखती हूँ लोग क्या बोल रहे हैं। पहले बिलीव ही नहीं कर रहे थे कि मैंने म्यूजिक दिया। काफी लोग सोचे कि किसी आदमी ने दिया किसी और मेरा नाम दिया है। मुझे बड़ा शौक, में जाके देखती थी तो दो तीन लड़के मुझे पहचान गए, क्योंकि पब्लिसिटी उन्होंने बहुत अच्छी की थी। मतलब उस जमाने में म्यूजिक डायरेक्टर की फोटो छापना बड़ी बात हो जाती थी। तो दो तीन लड़के खड़े थे, वो मैं एक कोने में बैठी देख रही थी। जिन्हें वो एक लड़का बताया, अरे तुमने सुना क्या बकवास म्यूजिक दिया इस पिक्चर का। बोले क्यों नहीं, एक भी गाना अच्छा नहीं। दूसरा बता रही है, यार हम सोचे थे पता नहीं क्या हुआ, किसी लड़की है जो म्यूजिक दे रही, मुझे तो नहीं लगता। सब बोलते रहे, मैं चुपचाप रही। उसके बाद मैं धीरे से उनके पास आके बोली, भैया मेरे गाने अच्छे नहीं लगे तो मैं तो कोई बात नहीं, मैं अगली पिक्चर में अच्छा म्यूजिक दे रही। पर एक्सपीरियंस, फिर वो बेचारे मुझसे माफी मांग ले। बोले नहीं, हम तो आपको ऐसे ये मजे आते थे। हम लोग जाते थे थिएटर में, कहाँ बैनर्स लगे हुए हैं, उसमें मेरा नाम कितना बड़ा लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है।
1: How adorable and how awesome is this song composed by Usha Khanna ji. हाँ थोड़ा सा उदास गाना है, लेकिन उदासी में भी अलग ही खूबसूरती होती है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
0: तेरे

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन।

वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग्स एवर इज लावारिस का अपनी तो जैसे तैसे। पता नहीं कितने सारे रीमेक्स रीमिक्सेस बने इस गाने के। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन हम इसके वीडियो की बात करेंगे। इसमें जो डांसर है ना, अक्सर ये गलत फहमी हो जाती है कि उन फीमेल डांसर का नाम नेली है। नेली वो एक्ट्रेस थी इस फिल्म में, एक्स्ट्रा एक्ट्रेस थी, जिनकी वजह से ऐसा सुनने में आता है कि अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच में थोड़ी सी लड़ाई ब्रेकअप टाइप का हो गया था, बिकॉज अमिताभ बच्चन साहब थोड़ा ज़्यादा ध्यान उन पर दे रहे थे। लेकिन ये गलत फहमी है, मतलब ये गलत फहमी है कि इस गाने के वीडियो में जो डांसर हैं वो नेली हैं, वो नेली नहीं है। उन डांसर का नाम है अलका नूपुर, जिन्होंने काफ़ी फिल्मों में एज डांसर परफॉर्म किया है। चलिए अभी तो यहाँ पे ये गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना,
3: बना।
2: मुर्गा मुर्गा नवीद वाला मुर्गा,
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो हेलो
5: सर, मेरे को गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ।
4: हाँ बोलिए
5: सर। आई एम सो सॉरी सर, बट सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
4: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं क्या बात है
5: सर, आई एम सो सॉरी, पूरा बता दीजिए।
4: क्या कह रहे हो भैया, कहाँ क्या हो गया?
5: सर आपने उसमें से अभी तक कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
4: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
5: आई एम सो सॉरी सर, ऐसे कभी कभी हो जाता है सर। सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
4: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। हेलो
5: आई एम सो सॉरी सर, सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था। सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
4: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा। भैया पागल है क्या?
5: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे।
4: पागल पागल है क्या?
5: आप तो देने पड़ेंगे सर।
4: हेलो
5: आप तो देने, अब तो फंस गए देने पड़ेंगे, अब तो फंस गए देने पड़ेंगे।
4: कौन बोल रहा है? विपिन?
5: नहीं सर, अब तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे।
4: पागल है क्या? दिमाग खराब है क्या? पैसे देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे पैसे।
5: अब तो फंस गए सर।
4: हेलो
6: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ सर। आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है।
4: उसका पैसों को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
6: नहीं सर वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ।
4: मतलब ये पक्की बात है आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
6: हाँ जी, अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर, मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब।
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

म्यूजिक कंपोजर जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बीच में कुछ गिनी चुनी ऐसे डिसएग्रीमेंट्स लड़ाइयां हुई होंगी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। नहीं, डिसएग्रीमेंट तो बहुत हुए होंगे, लेकिन ऐसे ढेंटडन टाइप की जो लड़ाई होती है वो गिनी चुनी थी। ऐसी एक उनकी कोई झड़प हुई थी जब ये कोई अब्रॉड म्यूजिक टूर पे गए थे, जहाँ पे प्यारेलाल जी जो हैं उन्होंने इम्पल्सिवली ऐसा डिसाइड कर लिया कि अब वो लक्ष्मीकांत के साथ काम नहीं करेंगे। इनफैक्ट दो हफ्ते तक लक्ष्मीकांत जी अकेले ही उन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे जो इन दोनों को मिला था। लेकिन ये लड़ाई बस फिर दो हफ्ते की ही थी। इस बीच में इतने सारे लोगों ने, इंक्लूडिंग पीपल लाइक लता मंगेशकर, मनोज कुमार, जे ओम प्रकाश और इनकी फैमिली के लोग भी, इन्होंने इनको इतना कन्विंस किया, इतना बोला कि भाई पैचअप कर लो, पैचअप कर लो, पैचअप कर लो, तो इनका पैचअप हो गया। अच्छा हुआ हो गया, नहीं तो इतना अमेजिंग म्यूजिक हमको कैसे मिलता। चलिए इन्हीं का कंपोज किया हुआ गाना सुनेंगे, पुरानी जींस पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुराने जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।
5: ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, ये माना मेरी जान

0: मैं अभी तक ये बात डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ कि कयामत से कयामत तक फिल्म का नाम पहले नफरत के वारिस होने वाला था।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। जी, इसका पहले नाम नफरत के वारिस होने वाला था। अगर इस नाम से फिल्म रिलीज होती तो क्या उतनी ही हिट होती? आई गेस सो। लेकिन तब हम इसे शॉर्ट फॉर्म में से QSQT नहीं बुलाते, तब हम इसे NKW बुलाते। डजंट साउंड कूल एट ऑल, नफरत के वारिस। QSQT इज क्यूट एंड कूल। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @RJ.Charu, RJ.CHARU इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों, ओनली ऑन मिर्ची।

0: रेखा एक बेहतरीन डांसर हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन जब एक बहुत पुराने और पॉपुलर इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि उन्होंने ये डांस कहाँ से सीखा है, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैंने कभी डांस सीखा ही नहीं, कभी नहीं सीखा। मेरे हमारे यहाँ हमारे फैमिली में यही है कि बचपन से सभी डांस करते हैं, माई मदर माई सिस्टर्स। और प्रोफेशनली अगर आप देखा जाए तो हाँ, ज़बरदस्ती हम लोगों को डांसिंग स्कूल मम्मी ने भेजा था ज़रूर, बट मैंने कभी ठीक से ध्यान से सीखा नहीं। अब मुझे लगता है कि आई विश मैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेती तो डांस। मुझे ये लगता है कि इट्स योर फीलिंग, अंदर से जो आप फील करते हैं उसको आप, इफ़ यू फील इट विथ योर सोल यू नो, तो वो यू नो अंग अंग में आ जाता है। इट्स योर ग्रेस व्हाट यू हैव, एंड आई थिंक हमारे फैमिली में सभी ग्रेसफुल है।
0: वेल, ग्रेस, एलिगेंस, नजाकत, अदाएं, ये तो ऐसा लगता है कुछ ट्रिक्स हैं। और रेखा एक जादूगरनी, ये बंदी ना इश्क है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तो कोशिश ही नहीं करना चाहती।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पिटी उंडन हो आप, और भाई जिस हिसाब की कॉमेडी फिल्में आ रही है ना इंडस्ट्री की तरफ से, दैट इज मेकिंग मी थिंक कि भाई क्या हो गया है, क्या हम अपने सोच का दायरा बढ़ा नहीं सकते हैं। सो है जवानी तो इश्क होना है, ये एक अपकमिंग फिल्म है जो डेविड धवन की अपेरेंटली लास्ट डायरेक्टोरियल मूवी होने वाली है। हाँ ठीक है, आई अग्री, डेविड धवन का एक सिग्नेचर है कॉमेडी मैडनेस, बट क्या उस चक्कर में हम आज भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और इनफिडेलिटी को वैलिडेट करें, ये जरूरी है? आई जेन्युइनली लव ब्रेन रॉट कॉमेडी। आप दीजिए मुझे उस तरीके की स्क्रिप्ट और उस तरीके की कहानी कि मैं पागल हो जाऊं बाय द एंड ऑफ द मूवी। बट सोचने वाली बात तो ये है कि क्या जेन्युइनली लोगों को हंसाने के लिए सिर्फ यही टॉपिक्स रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री के पास? मतलब पूरी फिल्म में हीरो के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं, वो 10 तरीके की चीजें कर रहा है, धोखा दे रहा है, फलाना ढिमकाना, और बाय द एंड वो एक मोनोलॉग देगा और सारी चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। यू नो, आज भी 2026 में इस अप्रोच के चेंज ना होने का जिम्मा हमें भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर देखेंगे नहीं ऐसी फिल्में तो हमें परोसी भी नहीं जाएंगी ना ऐसी फिल्में, इफ यू नो व्हाट आई मीन। माइंड यू, ये फिल्म 5th ऑफ जून को रिलीज होने वाली है एंड आई एम नॉट एट ऑल एक्साइटेड फॉर इट। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabala, uskabala, sakabala. Gabala. Murga, murga. Na vidbala, murga. Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ।
2: हाँ जी, हेलो।
3: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है? सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाते हैं, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
3: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 35/14A फर्स्ट फ्लोर नगर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
2: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
2: मेरा सनसाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला है।
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
3: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
2: बी पॉजिटिव, दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा। ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
3: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
2: सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल होना चाहिए।
3: जी आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: क्या
3: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं,
3: दोबारा कॉल करेंगे। आप क्या वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
1: इट्स पॉपुलर।

अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। माँ बहन का ट्रेलर, भाई ये अपकमिंग फिल्म का नाम है। हाँ जी, माँ बहन। आपको क्या लगा कि मैं गाली गलौज कर रही हूँ? इतनी बेवकूफ लग रही हूँ क्या आपको? एनीवे, ये ओटीटी पे रिलीज होने वाली अपकमिंग फिल्म है जिसमें माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी और धारणा, हु स्टार्टेड हर करियर एज अ कंटेंट क्रिएटर, ये लीड रोल्स निभाते नजर आ रही है। द मूवी इज डायरेक्टेड बाय सुरेश त्रिवेणी, जो 4th of June से स्ट्रीम करना शुरू होगी। एंड ट्रेलर देख के समझ में आ रहा है कि भाई ये कॉमेडी ड्रामा लेकर आने वाली है एक टेंस लाफ आउट लाउड कवर अप गेम, जिसमें एक माँ अपनी दो बेटियों के साथ काफी रोमांचक जिंदगी जीते नजर आ रही है। एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड फॉर दिस वन। राजकुमार राव और कीर्ति सुरेश स्टारर फिल्म रफ्तार की बात कर लेते हैं, जिसको एक नया रिलीज डेट मिल चुका है। हाँ जी, अब ये फिल्म थिएटर्स में अक्टूबर 16 को रिलीज होगी। बाकी आदित्य निम्बलकर डायरेक्टोरियल ये फिल्म इंडिया के रैपिडली ग्रोइंग एड टेक सेक्टर को टच करने वाली है, विच इज गोइंग टू बी एन इमोशनल ड्रामा विद थीम्स ऑफ एम्बिशन एंड मॉडर्न एंटरप्रेन्योरियल कल्चर। This is a major cross-industry collaboration जो किया है अक्षय कुमार ने अपनी अपकमिंग फिल्म वेलकम टू द जंगल के लिए विद भोजपुरी एक्टर एंड सिंगर अक्षरा सिंह। हाँ जी, इनका एक गाना रिलीज हुआ है जिसका नाम है घिस घिस घिस। Although being a बिहारी, मुझे कुछ खास समझ नहीं आया ये गाना, क्योंकि फिर से इसमें उसी तरीके के म्यूजिक और उसी तरीके के लिरिक्स का इस्तेमाल है जिससे हम बिहारी अपने आप को रिलेट नहीं करना चाहते। बट एज वी ऑल नो, बॉलीवुड और क्लीशे गो हैंड इन हैंड। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। Stay tuned, it's hot. Whoa!

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप, और इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, मैं तो अपने डेली ड्रिल की बात कर रही हूँ यार। फाइंडिंग मिर्ची फिल्म जी, हाँ जी, इट्स टाइम। आपको तो पता ही है, आपको इस वक्त मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम करना होता है अपना फोन नंबर ताकि मैं आपको कॉल करूँ और ये गेम आपके साथ खेलूँ। तो आज मेरी बात किससे हो रही है?
3: रिंकू से।
0: रिंकू जी, कैसी हैं आप?
3: बढ़िया हूँ।
0: अरे क्या बात है, गेम खेलिएगा?
3: हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल उसी के लिए।
0: ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शाहरुख खान का नाम ओके यानी ओम कपूर किस फिल्म में था?
3: ओम शांति ओम।
0: ग्रेट। ओम शांति ओम में शांति प्रिया को कौन मारता है?
3: अर्जुन रामपाल।
0: अर्जुन रामपाल ने लीड गिटारिस्ट का रोल किस फिल्म में किया है?
3: रॉक ऑन।
0: ओके, रॉक ऑन का कौन सा हीरो भाग मिल्खा भाग में भी है?
3: ये फरहान अख्तर।
0: फरहान अख्तर की फिल्म जिसमें ऋतिक रोशन है?
3: जिंदगी ना मिले दोबारा।
0: ग्रेट। ZNMD में लैला का रोल किसने किया है?
3: कटरीना कैफ।
0: कटरीना किस फिल्म में पॉलिटिशियन बनी है?
3: राजनीति।
0: राजनीति का कौन सा हीरो कटरीना का एक्स भी रह चुका है?
3: रणबीर कपूर।
0: रणबीर कपूर ने कौन सी बायोपिक की है?
3: संजू ही तो है।
0: संजू में रणबीर कपूर का बेस्ट फ्रेंड कौन बनता है?
3: दोस्त बनता है वो गुज्जू, उसका नाम मुझे नहीं मालूम है।
0: चलिए कोई बात नहीं, इतना अच्छा जो अभी तक खेला है आपने उसके मद्देनजर आपको ये टैग तो देना बनता है।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: तो चलो भाई, आज के एपिसोड में रिंकू जी एक मिर्ची फिल्मची तो बन चुकी हैं हमारी, बाकी इसके आगे का गेम अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यू नो द ड्रिल, मिर्ची श्रुति के डीएम में जाके अपना नंबर भेजिए। टिल देन एंजॉय द अपकमिंग सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची इन सॉन्ग।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: ए गोली मार भेजे मैं, भेजा शोर करता है।

0: होगा कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: फाइंडिंग मिर्ची फॉर लंची।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: So if you are new to the show, let me tell you, मैं रोज ये गेम खेलती हूँ जिसके थ्रू आई फाइंड अ मिर्ची फिल्म जी। बेसिकली देर आर अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम बॉलीवुड जिनका आंसर अगर आपने सही सही दिया तो ये टैग आपको मिल जाता है। सो आज ये गेम हमने शुरू किया था रिंकू जी के साथ, जो एक पॉइंट पे अटकी, और उसके आगे का गेम खेलने के लिए अब हमारे साथ है मीनाक्षी जी। क्या आप रेडी है?
3: हाँ जी।
0: ओके, तो मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ कि फिल्म संजू में रणबीर कपूर का बेस्ट फ्रेंड कौन बनते हैं?
3: विक्की कौशल।
0: विक्की कौशल किस फिल्म में पाकिस्तानी मेजर का रोल प्ले करते हैं?
3: राजी।
0: राजी में सहमत का रोल किसने प्ले किया है?
3: ये आलिया भट्ट।
0: आलिया भट्ट टीवी एंकर किस फिल्म में बनती हैं?
3: रॉकी और रानी।
0: रॉकी और रानी में जिम फ्रीक कौन है?
3: रणवीर सिंह।
0: रणवीर सिंह ब्रेड पकौड़े की कसम किस फिल्म में खाते हैं?
3: शादी मुबारक।
0: तो आप बोल सही रही हैं, उनका ये कंपनी का नाम होता है भले ही, लेकिन मूवी का नाम कुछ और है।
3: बैंड बाजा बारात।
0: ग्रेट, बैंड बाजा बारात में जिसके साथ व्यापार उसके साथ कभी ना करो प्यार, ये डायलॉग कौन बोलता है?
3: अनुष्का शर्मा।
0: ग्रेट, अनुष्का शर्मा कुश्ती किस फिल्म में करती हैं?
3: सुल्तान।
0: वाओ, सुल्तान में सलमान खान का कोच कौन बना है?
3: रणदीप हुडा।
0: रणदीप हुडा आलिया को किस फिल्म में किडनैप करते हैं?
3: रणदीप हुडा हाईवे।
0: क्या बात है, तो इसी के साथ आज हमारी दूसरी मिर्ची फिल्म ची बनी है मिस मीनाक्षी।
1: मिर्ची फिल्म ची।
0: सो वरी नॉट माई फ्रेंड, अगर आज ये गेम मिस हो गया देन कल एक बार फिर से मौका मिलेगा। यू नो द ड्रिल, मिर्ची श्रुति के डीएम में जाके अपना नंबर भेजना है एंड रेस्ट ऑफ इट इज गोना बी टेकन केयर बाय मी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La vie va la burga. Mirci, burga.
1: हेलो
2: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
1: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
2: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
1: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
2: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
1: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
2: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
1: बोलो।
2: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
1: कौन सा?
2: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
1: कच्चा? अच्छा।
2: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
1: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ
2: वो पक्का हो जाएगा, मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
1: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
2: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
1: कुकर तो है।
2: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
1: अच्छा।
2: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
1: सोडा,
2: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
1: लहसुन? यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना, खाना बना रहा है?
2: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
1: मतलब उसको पकाऊं?
2: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
1: ऐसे कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क, कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
2: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना है, पकाना नहीं है।
1: नहीं नहीं कोई मैं सर्विस नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
2: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
1: चल जाएगी?
2: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
1: अबे कौन बोल रहा तू?
2: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
1: जरा ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

0: बाबू मोशाय, ये गाने नहीं चलती फिरती समझदारी है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। लेकिन आप तो समझदार हैं बाबू मोशाय, इसलिए तो आज का पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे गानों की डिस्कशन कर रही हूँ जो हमारी जिंदगी में समझदारी भरते हैं। हाँ, तो लिस्ट में सबसे पहले वी डिस्कस्ड अबाउट द सॉन्ग पटाखा गुड्डी फ्रॉम द मूवी हाईवे, और अब नंबर दो पे लेट्स टॉक अबाउट कोक स्टूडियो 14 का गाना तू झूम जो आया था इन द ईयर 2022। सिंगर्स हैं आबिदा परवीन एंड नसीबुलाल, लिरिक्स हैं इस गाने के जुल्फिकार जब्बार खान और अदनान धूल के, म्यूजिक दिया है जुल्फी एंड अब्दुल्ला सिद्दीकी ने, और भाई साहब इस गाने का एक एक लाइन आपके दिल में ऐसे जाके लगता है कि क्या ही बताओ, स्पेसिफिकली दिस वन।
3: समझ के की करना है, दिल नु समझावा तू झूम।
0: सबको समझ के क्या ही कर लेंगे, अपने दिल को ये चीज समझा लो, इसमें ही समझदारी है बाबू मोशाय। क्योंकि लोगों को जो सोचना है आपके बारे में वो सोचते रहेंगे, आप कितनी ही मेहनत कर लो अपनी इमेज बदलने की, सामने वाले को विश्वास दिलाने की अबाउट थिंग्स दैट यू बिलीव इन, बट ऐसा होगा नहीं। इसलिए बेटर ये है कि दूसरों की चिंता किए बिना अपनी जिंदगी चलाते रहो। मूविंग ऑन इन द लिस्ट, नंबर तीन पे लेट्स टॉक अबाउट फिल्म तमाशा से सफरनामा गाने के बारे में। भाई भाई, 2015 में आई थी ये मूवी, डायरेक्टेड बाय इम्तियाज अली अगेन। म्यूजिक इस मूवी का है एआर रहमान द्वारा, लिरिक्स हैं इरशाद कामिल के, और इस गाने को गाया है लकी अली ने। स्पेसिफिकली दिस लाइन जस्ट टेक्स अवे माय हार्ट।

ऐसा होता है ना कि हम पूरी दुनिया में चैन सुकून ढूंढना चाहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि जब तक आपका दिल आपका मन शांत नहीं होगा आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। सो ऑल इन ऑल बाबू मोशाय, जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं उसकी शुरुआत अपने अंदर से करो। बाकी तो समझदार को इशारा काफी। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: ये गाने नहीं आपकी जिंदगी के सल्यूशन है बाबू मोशाय।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: तो हमारी जिंदगी में कई सिचुएशंस होती हैं और हर सिचुएशन के लिए कोई ना कोई गाना बिल्कुल एप्ट बैठता है। तो अगर आपकी जिंदगी में फिलहाल नेगेटिव सिचुएशंस चल रही हैं तो बाबू मोशाय आज का पांच का पंच की लिस्ट बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आई एम डिस्कसिंग अबाउट सच हिंदी सॉन्ग्स जो हमें मोटिवेट करते हैं, हमें समझ देते हैं। इन द लिस्ट सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट पटाखा गुड्डी गाना फ्रॉम द मूवी हाईवे। नंबर दो पे हमने तू झूम की बात की फ्रॉम कोक स्टूडियो 14। नंबर तीन पे वी टॉक्ड अबाउट तमाशा से सफरनामा सॉन्ग के बारे में। और अब बारी है नंबर चार पे टू टॉक अबाउट फिल्म पीकू से जर्नी सॉन्ग के बारे में बाबू मोशाय। वेल, ये मूवी डायरेक्ट की सुजीत सरकार ने जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2015, जिसमें अमिताभ बच्चन, इरफान खान और दीपिका पाडुकोन लीड रोल्स में थे। टॉकिंग अबाउट द म्यूजिक, अनुपम रॉय का अल्टीमेट म्यूजिक है, लिरिक्स भी उनके ही हैं अलोंग विद मनोज यादव। और अगर जर्नी सॉन्ग की पर्टिकुलरली बात करें तो आवाज है अनुपम रॉय, श्रेया घोषाल, अनुज गुरवारा और एस जानकी की। एंड भाई, इस गाने का ये वाला लाइन जो है ना,
3: वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिश अनजान है अब क्या करें।
0: वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे। भाई, यही तो फलसफा होना चाहिए ना हर इंसान की जिंदगी का, कि जितना भी वक्त है उसको इस तरीके से जियो मानो वो आखिरी पल हो आपका, और अगर दर्द है तो उस पे मरहम करो, वरना नासूर बनते उसको देर नहीं लगेगी। वेल, मूविंग ऑन इन द लिस्ट, नंबर पांच पे लेट्स टॉक अबाउट द सॉन्ग मांझा फ्रॉम द मूवी काई पोचे, जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2013, डायरेक्टेड बाय अभिषेक कपूर। मूवी के लीड्स थे सुशांत सिंह राजपूत, राजकुमार राव एंड अमित सार्ड। म्यूजिक है अमित त्रिवेदी का, लिरिक्स है स्वानंद किरकिरे के। एंड टॉकिंग अबाउट दिस सॉन्ग, अमित त्रिवेदी और मोहन कनन ने क्या जस्टिस किया है इस गाने के साथ यार, स्पेसिफिकली गाने का ये पार्ट।
4: रिश्ते पंखों को हवा देंगे, रिश्ते दर्द को दवा देंगे, जीत कभी।
0: रिश्ते पंखों को हवा देंगे, रिश्ते दर्दों को दवा देंगे। हमारी जिंदगी में ये जो रिश्ते होते हैं ना, वो बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए सही रिश्ते बनाना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके अप्स में तो सब खड़े होते हैं, असली रिश्ते तो तब पता चलते हैं जब आपका डाउनफॉल होता है। बाकी तो समझदार को इशारा काफी। वैसे मेरी इस लिस्ट में अगर आप भी कुछ ऐसे ही गाने ऐड करना चाहो, देन फील फ्री टू डू दैट। यहाँ के अलावा कनेक्ट कर सकते हैं ना फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे, आई एम देयर विद द नेम MIRCHISHRUTI, यानी मिर्ची श्रुति। इन द मीन टाइम, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

भाई अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। माँ बहन का ट्रेलर, भाई ये अपकमिंग फिल्म का नाम है। हाँ जी, माँ बहन। आपको क्या लगा कि मैं गाली गलौज कर रही हूँ? इतनी बेवकूफ लग रही हूँ क्या आपको? एनीवे, ये ओटीटी पे रिलीज होने वाली अपकमिंग फिल्म है जिसमें माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी और धारणा, हु स्टार्टेड हर करियर एज अ कंटेंट क्रिएटर, ये लीड रोल्स निभाते नजर आ रही है। द मूवी इज डायरेक्टेड बाय सुरेश त्रिवेणी, जो 4th of June से स्ट्रीम करना शुरू होगी। एंड ट्रेलर देख के समझ में आ रहा है कि भाई ये कॉमेडी ड्रामा लेकर आने वाली है एक टेंस लाफ आउट लाउड कवर अप गेम, जिसमें एक माँ अपनी दो बेटियों के साथ काफी रोमांचक जिंदगी जीते नजर आ रही है। एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड फॉर दिस वन। राजकुमार राव और कीर्ति सुरेश स्टारर फिल्म रफ्तार की बात कर लेते हैं, जिसको एक नया रिलीज डेट मिल चुका है। हाँ जी, अब ये फिल्म थिएटर्स में अक्टूबर 16 को रिलीज होगी। बाकी आदित्य निम्बलकर डायरेक्टोरियल ये फिल्म इंडिया के रैपिडली ग्रोइंग एड टेक सेक्टर को टच करने वाली है, विच इज गोइंग टू बी एन इमोशनल ड्रामा विद थीम्स ऑफ एम्बिशन एंड मॉडर्न एंटरप्रेन्योरियल कल्चर। This is a major cross-industry collaboration जो किया है अक्षय कुमार ने अपनी अपकमिंग फिल्म वेलकम टू द जंगल के लिए विद भोजपुरी एक्टर एंड सिंगर अक्षरा सिंह। हाँ जी, इनका एक गाना रिलीज हुआ है जिसका नाम है घिस घिस घिस। ऑल्दो बीइंग अ बिहारी, मुझे कुछ खास समझ नहीं आया ये गाना, क्योंकि फिर से इसमें उसी तरीके के म्यूजिक और उसी तरीके के लिरिक्स का इस्तेमाल है जिससे हम बिहारी अपने आप को रिलेट नहीं करना चाहते। बट एज वी ऑल नो, बॉलीवुड और क्लीशे गो हैंड इन हैंड। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। Stay tuned, it's on.

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और स्वागत है आपका ट्यूसडे की शाम में। वैसे दोस्तों, ट्यूसडे को ना हम वीक का अंडरडॉग भी कह सकते हैं, पर मजे की बात यह है कि दुनिया के कई कंट्रीज में ट्यूसडे इज एक्चुअली कंसिडर्ड द मोस्ट प्रोडक्टिव डे ऑफ द वीक। मतलब आज का दिन सिर्फ काम के लिए ही नहीं, कामयाबी के लिए भी बहुत जरूरी होता है। और जब प्रोडक्टिविटी का प्रेशर हो तो एक शानदार शाम और भी ज़रूरी हो जाती है, और बस वही लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। तो ये शाम फुल है बॉलीवुड बीट्स, फिल्मी फील्स और आपके फेवरेट डेडिकेशंस के साथ। तो चलिए बनाते हैं इस ट्यूसडे को ट्रेंडिंग विद द नेक्स्ट सॉन्ग ओनली फॉर यू राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Milchi.
1: Escavana, buscavana, sacavana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milchi, burga.
2: Hello.
3: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ।
2: हाँ जी, हेलो।
3: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है, सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है।
3: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 3535/14A फर्स्ट फ्लोर नगर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
2: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
2: मेरा सनशाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला,
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
3: मैडम, ये इंटरनेट का कनेक्शन है। आप मेरे को क्यों बता रहे हो, ब्लड ग्रुप बताइए।
2: बी पॉजिटिव, दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा। और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता तो दो।
3: तो मैं आपको, अरे मैडम
2: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल
3: सुमन जी आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हमें? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं? यार नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है, आप अगर मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया, रेडियो मिर्ची पे हैं आप, दिल्ली सुन रही है आपको। सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं,
3: दोबारा कॉल करेंगे। आप क्या वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, मिर्ची फ्रेश माल।
6: रोमांटिक फील्स और सोलफुल मेलोडी के लिए सुनो खासियत।

0: इस गाने को गाया है राघव चैतन्य और जानिता गांधी ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। चांद मेरा दिल मूवी से सुनिए खासियत ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: दोस्तों आज का ऑडियंस सिंपल नहीं है, ट्रेलर देखते ही रिव्यू रेडी होता है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी, और इसीलिए आज बॉलीवुड के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है एक्सपेक्टेशन वर्सेस डिलीवरी। मतलब हमने देखा है बिग बजट होने से फिल्म हिट नहीं होने वाली या फिर छोटी फिल्म भी फ्लॉप नहीं होने वाली। ऑडियंस तो अब स्टोरी देखते हैं, ऑथेंटिसिटी फील करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं इज इट वर्थ माई टाइम टू गो टू द थिएटर और नॉट। और इसलिए चाहे कितनी भी बड़ी मूवी हो, कितने भी बड़े नाम हो, कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, सिर्फ बड़ा मत बनाओ, दिल तक पहुंचाओ, यही ऑडियंस का कहना है। तो दोस्तों आप भी बताना कि आपको क्या लगता है बॉलीवुड को अब क्या इंप्रूव करना चाहिए, स्टोरी टेलिंग, म्यूजिक, कास्टिंग या मार्केटिंग। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

एक महीना, सिर्फ एक महीना भी काफी है जिंदगी बदलने के लिए। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और चलिए आज बात करते हैं नई बिगिनिंग्स की। कभी सोचा है कि एक छोटी सी ट्रेनिंग आपको एक बड़ा करियर दे सकती है? जी हाँ, फ्लेबोटॉमी टेक्नीशियंस, हाँ वही लोग जो हॉस्पिटल्स में हर दिन केयर का पहला कदम होते हैं। AIMS एजुकेशन में सिर्फ एक मंथ की ट्रेनिंग प्रोग्राम है और आप भी बन जाते हो हेल्थ केयर फील्ड के एक इंपॉर्टेंट हिस्सा। ऑनलाइन और कैंपस दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, फ्लेक्सिबल भी है और ड्यूएबल भी। तो अगर आप भी एक सेफ, केयरिंग और सिक्योर प्रोफेशन चाहते हो तो आज ही कॉल कीजिए AIMS एजुकेशन एट 9082220002 या फिर विजिट कीजिए AIMSeducation.edu और डिस्कवर कीजिए वो एक सिप ऑफ चेंज जो आपकी जिंदगी में केयर और ग्रोथ दोनों लाएगा। और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

गरबा का मूड हो या ऑफिस का बोर्डम, दीप गुजराती स्नैक्स की बीट ही काफी है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और सुरती स्पेशल तीखा मिक्स भटानी कानी। एवरी बाइट में लगता है दैट यू आर डूइंग डांडिया एंड दैट टू विथ फ्लेवर्स, स्पाइसी क्रंची और देसी फन, या जिसकी गूंज ना मिर्ची सिद्धि के स्टूडियो तक भी पहुंच जाती है। तो आज ही ट्राई कीजिए दीप गुजराती स्नैक्स, सूरत से आया फ्लेवर का फेस्टिवल, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

इंसानों के मूड स्विंग सुने थे, लेकिन न्यू जर्सी के वेदर का अपना ही अलग मूड स्विंग है। शाम शानदार लाइक सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। क्योंकि यार एक दिन लगता है कि स्प्रिंग ऑफिशियली आ चुका है, तो नेक्स्ट दिन लगता है कि नहीं नहीं अभी पिक्चर बाकी है। क्योंकि कभी जैकेट निकाली जाती है, कभी जैकेट गाड़ी में ही छोड़ दी जाती है। सुबह वेदर बहुत ही मस्त होता है, तो शाम तक इतनी हवा बहती है, इतनी हवा बहती है कि लगता है कि यार ये मौसम को भी ना फुल मूड स्विंग हो रहा है। वैसे सच कहूँ तो न्यू जर्सी का वेदर ना कभी कभी उस दोस्त जैसा लगता है जो लास्ट मिनट में प्लान चेंज कर देता है। आप सोचोगे कि यार अभी अच्छा खासा वेदर चल रहा है, एक बहुत ही अमेजिंग सी चाय पी जाए, तब तक वेदर का मूड ही बदल जाता है। पर फन तो यह है दोस्तों कि अब इस अप एंड डाउन में स्प्रिंग की झलक तो थोड़ी बहुत दिख रही है। ट्रीज आर गेटिंग ग्रीनर, हवा थोड़ी फ्रेंडलियर हो रही है और दिल बोल रहा है कि हाँ यार आउटडोर सीजन तो आ चुका है। तो चलिए इसी के साथ वेदर जितना भी अनप्रेडिक्टेबल हो हम हमारे मूड को प्रेडिक्टेबल बना सकते हैं और हमेशा ही शानदार बना सकते हैं विद दिस सॉन्ग्स ऑन रेडियो मिर्ची। तो दोस्तों बस उसी के लिए आपके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. Na vidva la burka. Milci, burka.
1: Hello? Hello?
2: Sir, very good evening, man. Bank to photo.
1: हाँ बोलिए
2: सर. I'm so sorry सर, but सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
1: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं क्या
2: बात है सर, आप तो सॉरी पूरा बता दिए.
1: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
2: सर आपने उसमें से अभी तक कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
1: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
2: आई एम सो सॉरी सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
1: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
2: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
1: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
2: I'm so sorry सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
1: पागल पागल है
2: क्या? अब तो देने पड़ेंगे सर.
1: हेलो.
2: अब तो फंस गए देने पड़ेंगे.
1: कौन बोल रहा है? विपिन.
2: नहीं सर, तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
1: अब
2: तो फंस गए सर.
1: हेलो
2: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ सर. आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है.
1: उसके पैसे को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
2: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे. आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
1: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
2: जी. अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर. मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

चाहे कितने भी एल्गोरिदम्स बना लो, चाहे कितने भी एनालिसिस कर लो, कुछ चीजें ना अनप्रेडिक्टेबल ही रहती है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और फिर चाहे वेदर हो या फिर मूड हो, कभी कभी समझ ही नहीं आता मतलब आज अच्छा दिन होने वाला है या नहीं है। और न्यू जर्सी में तो यार हमें हर बार वेदर ऐप्स देखने पड़ते हैं कि सुबह जो वेदर होता है वो शायद शाम को ना मिले, और शाम को जो वेदर होता है वो शायद सुबह ना मिले। तो जब भी अच्छा वेदर हो निकल लो, चल पड़ो, चाहे फिर वो एक वॉक के लिए हो या एक खूबसूरत सी ड्राइव के लिए हो। और कुछ ऐसा ही होता है जब मार्केट भी अनप्रेडिक्टेबल हो, तब हमें चाहिए होता है एक ऐसा एक्सपर्ट जो हमें सही गाइडेंस दे कि कब किस मार्केट का किस तरह से फायदा उठाना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए ऐसे मार्केट में क्या करना चाहिए, उसी के लिए तो मेरे दोस्त बीश आपकी मदद करने के लिए हाजिर है। ओवर टू यू बीश।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

ऑफिस के डेडलाइन से थोड़ा काम डाउन होना चाहते हो तो बस एक चम्मच दीप दही काफी है। शमशांदा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और यार ऑफिस के डेडलाइंस, बॉस की बड़बड़ से दिमाग अगर गर्म हो चुका है तो उसे ही कूल करने के लिए दीप दही के साथ एक ठंडी ठंडी लस्सी हो जाए, क्योंकि फार्म फ्रेश, हॉर्मोन फ्री और बिल्कुल घर जैसी टेक्सचर वाली यही है वो दही जो देता है प्योर कम्फर्ट फूड। और अगर लस्सी ना सही, पर अगर रात के डिनर पे एक प्लेट पुलाव और उसके साथ दीप दही के साथ बनाया हुआ वो बूंदी का रायता, ओ हो, बस ऐसा सुकून, ऐसी शांति मिलती है ना कि क्या बताएं। तो आज डिनर में हो जाए दीप दही का कूलनेस का क्लासिक फॉर्मूला, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एक एल्बम जिसके सारे के सारे गाने सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जहाँ इतने सारे गाने बनते हैं, कभी कोई हिट होते हैं, कभी कोई फ्लॉप, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे एल्बम्स बन जाते हैं ना जिसके सारे के सारे गाने एक से बढ़कर एक होते हैं, जिसको आप स्किप ही नहीं कर सकते और वो टाइमलेस रह जाते हैं। जी हाँ, 2007 की मूवी सलाम इश्क, वो एक ऐसा बॉलीवुड म्यूजिक का एल्बम था जिसके यार इतने अमेजिंग गाने थे। मतलब ये एल्बम नहीं था, ये तो थी म्यूजिकल थाली, क्योंकि 6 अलग कहानियां और उससे भी ज्यादा उनके अमेजिंग से जज्बात जो कि कैप्चर हुए थे हर एक गानों में। तो चलिए, इसी का एक गाना है सलाम इश्क द टाइटल ट्रैक। दोस्तों इसमें तो यार 6 जोड़ियां एक ही फ्रेम में दिख रही थी और लोगों ने कहा कि ये ना कहीं ना कहीं बॉलीवुड का एवेंजर्स मोमेंट था, क्योंकि वैसे तो एवेंजर मोमेंट 2008 में आया था, लेकिन बॉलीवुड ने बहुत ही पहले, इट वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम, 2007, इतने सारी जोड़ियां एक साथ, इतने सारे सिंगर्स एक साथ आए थे इस एक गाने के लिए, सलाम इश्क द टाइटल ट्रैक। वैसे तो यार सॉन्ग का स्केल और ग्रैंडियर देख के यही लगता था कि किसी अवार्ड शो के लिए ही ये गाना बनाया हो, क्योंकि शूटिंग के लिए भी इतना मैसिव सेट डिजाइन हुआ था और सारी जोड़ियों को एक ही दिन में सिंक प्रैक्टिस करनी थी। तो जी हाँ, सारे जो बॉलीवुड की जोड़ियां थी वो तो इस गाने में थी, लेकिन सारे जो म्यूजिकल सिंगर्स यानी सोनू निगम, श्रेया घोषाल, कुणाल गांजावाला और भी कई सारे सिंगर्स एक ही साथ इस गाने में थे, तो ये गाना तो एक शादी थीम बनना ही था। चलिए सुनते हैं सलामे इश्क टाइटल ट्रैक फ्रॉम द मूवी सलामे इश्क। लेकिन आप भी बताइए वो कौन सा ऐसा एल्बम है जिसका कोई भी गाना आप स्किप नहीं कर पाते। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और तब तक सलामे इश्क का ये टाइटल ट्रैक राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Crazy.

एक ऐसा एल्बम जिसके सारे के सारे गाने सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, बातें हो रही है यार कि कभी कभी कुछ ऐसे एल्बम्स बन जाते हैं कि जिसका कोई भी गाना मन ही नहीं करता कि हम स्किप करें। और वो जब ज़माना आता था ना कि जब कैसेट्स आती थी, तो एक ऐसी कैसेट उस एल्बम की बाय करना तो फुल ऑन पैसा वसूल लगता था। और ऐसा ही एक एल्बम था 2007 का, सलाम ए इश्क, जिसके यार हर एक गाना बहुत ही अमेजिंग था। सलाम है इस टाइटल ट्रैक के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं, लेकिन और एक गाना इस एल्बम का, तेनू लेके, जो कि गाया गया है सोनू निगम एंड महालक्ष्मी अय्यर ने। वैसे तो यार इस गाने के लिए सलमान खान ने जो डांस किया था और उनकी जो एंट्री आई थी, वो एंट्री कई सारी शादियों का एंथम बन गया था। मतलब इतने सारे दुल्हों ने उसी गाने पर अपनी एंट्री की है कि यार बस तेनू मैं लेके जावांगा, ये एक शादी के लिए बहुत ही बेस थीम बन गया था। और ना सिर्फ शादी के लिए यार, मतलब प्रपोजल के लिए भी यही गाना यूज करते थे। जी हाँ, ऑलमोस्ट फॉर अ डेकेड ये चला, जब तक कि नए गाने नहीं आए। तो वन ऑफ द हिट सॉन्ग्स ऑफ दिस एल्बम, तेनू लेके मैं जावांगा, सोनू निगम एंड महालक्ष्मी अय्यर ने गाया हुआ ये गाना, वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग। तो चलिए इसे प्ले करते हैं, लेकिन और भी एक गाना बाकी है इसी एल्बम का। वैसे आप भी मुझे अपनी रिक्वेस्ट जल्द से जल्द भेज सकते हो, DM मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, कि इस एल्बम का आपको कौन सा गाना पसंद है जल्दी से बताइए। और तब तक के लिए तेनू लेके मैं जावांगा, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Isca bana, pusca bana, saca bana. Rambana. Burka, burka. La fie bala burka. Mirchi burka.
2: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
3: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
2: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
3: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
2: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
3: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
2: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
3: बोलो।
2: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
3: कौन सा?
2: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
3: अच्छा।
2: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
3: कच्चे तेल से गाड़ी चलाऊं?
2: वो पक्का हो जाएगा, मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
3: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
2: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
3: कुकर? हाँ कुकर तो है।
2: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
3: अच्छा।
2: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
3: सोडा,
2: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
3: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना खाना बना रहा है?
2: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
3: मतलब उसको पकाऊं?
2: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
3: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा, रिस्क कौन लेगा, ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
2: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है।
3: नहीं नहीं कोई मैं सर्विस नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
2: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
3: चल जाएगी?
2: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
3: अबे कौन बोल रहा है तू?
2: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
3: अरे यार जरा ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

बॉलीवुड म्यूजिक का डिबेट कभी खत्म ही नहीं होता, ओल्ड इज गोल्ड या न्यू इज बोल्ड। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और पुराने गाने ना यार टाइम लेते थे दिल में बसने के लिए, लेकिन नए गाने इंस्टेंट वाइब देते हैं। पहले लिरिक्स डायरी जैसे लगते थे, लेकिन आज बीट्स प्लेलिस्ट फ्रेंडली हो गए। दोनों का ना अपना ही एक अलग चाव है, एक मेमोरी बनाता है लेकिन दूसरा मोमेंट बनाता है। और शायद इसी बैलेंस में बॉलीवुड म्यूजिक सर्वाइव कर रहा है। वैसे आप भी बताओ दोस्तों, आपका मूड आज किस तरफ है, रेट्रो या रीसेंट? डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। फिलहाल मेरा मूड क्या कहता है वो तो आप अभी सुनेंगे राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Nej. Nej. Ara vai. Ara vai. Let's go.
1: Radio Mirchi, New York. It's hot.

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और वैसे इतने सारे गाने जहां बनते हैं, कुछ फ्लॉप कुछ हिट, लेकिन यार कुछ ऐसे एल्बम्स बनते थे जिसका हर एक गाना एक से बढ़कर एक होता था। और 2007 में रिलीज हुआ हुआ एक ऐसा एल्बम सलाम इश्क, जी हाँ, शंकर महादेवन के मैक्सिमम कंपोजिशन इस एल्बम के लिए थे। और हर एक गाना यार ब्लॉकबस्टर था, मतलब आप स्किप भी नहीं कर सकते, चाहे वो बाबू जी धीरे चलना का रिमिक्स वर्जन ही क्यों ना हो। तो यार इसी एल्बम का एक जो सॉन्ग है वो बहुत ही खास है, एंड दैट इज मेरा दिल दिल मेरा, संग बाय शान एंड निहिरा जोशी। वैसे तो यार इस गाने को जब फिल्माया गया था तो इतने सारे कपल्स हैं इस मूवी में, जॉन अब्राहम विद्या बालन हो, उनकी केमिस्ट्री तो बहुत ही अमेजिंग थी, फिर चाहे हमारी प्रियंका चोपड़ा और सलमान खान हो, लेकिन यार सबसे ज्यादा जो अमेजिंग केमिस्ट्री थी जिसने लोगों का दिल जीत लिया था, दैट वॉज शैनन एसरा एंड गोविंदा की। मतलब ये गाना स्पेसिफिकली जिसमें शैनन एसरा ने बहुत सारे एथनिक कॉस्ट्यूम्स पहने थे और गोविंदा बीन गोविंदा अलग अलग जगहों पे डांस किए जा रहे थे, मतलब कहीं हवेलियों के सामने कहीं ट्रक पर, दिस सॉन्ग वॉज रियली रियली ब्यूटिफुली पिक्चराइज्ड। और गोविंदा के डांस मूव्स, मतलब दे वर किलिंग इट, दे वर टोटली किलिंग इट। तो वेरी वेरी क्यूट सॉन्ग, और बहुत ही क्यूट जोड़ी लग रही थी शैनन एसरा और गोविंदा की। वैसे यार ये गाना इतना ज़्यादा प्यारा है तो यू कैन लिसन टू इट एनी टाइम। तो अभी मैं आपके लिए बजाने वाली हूँ मेरा दिल दिल मेरा, संग बाय शान एंड निहिरा जोशी। लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो इस एल्बम का आपका कौन सा फेवरेट गाना है, टेल मी ऑन इंस्टा एट आर जे मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और तब तक के लिए सलाम इश्क का मेरा दिल, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत शाम में। वैसे खूबसूरत शाम के खूबसूरत गाने तो बज ही रहे हैं, लेकिन यार एक ऐसा खूबसूरत एल्बम निकला था जिसके सारे के सारे गाने अमेजिंग थे। 2007 की रिलीज्ड सलाम इश्क की मूवी का जो गाना है, सॉरी जो एल्बम है, उसके सारे के सारे गाने अमेजिंग थे यार। शंकर एहसान लॉय ने इस एल्बम को कंपोज किया था और इसके काफ़ी सारे गानों के बारे में हमने ऑलरेडी बात की है, लेकिन एक गाना है जो आपने रिक्वेस्ट किया है। जी हाँ, आदित्य पाटिल एडिसन में जो रहते हैं, उन्होंने एक गाना रिक्वेस्ट किया इसी एल्बम का, एंड दैट इज दिल क्या करे संग बाय अदनान सामी। वैसे तो यार दोस्तों, सलाम इश्क का टाइटल ट्रैक तो अमेजिंग था ही, लेकिन उसी टाइटल ट्रैक का एक अलग वर्जन बनाया गया था दिल क्या करे इस गाने में, अदनान सामी की मैजिकल वॉइस में। और एक खास बात थी इस गाने की कि यार इस गाने का जो पूरा मूड है, पूरा रोमांटिक मूड है, यू नो पूरा रोमांस ओवरलोडेड है इस गाने में, लेकिन उस रोमांस के वाइब को रखने के लिए

मैजिकल आवाज़ में ये गाना गाए। तो चलिए आदित्य के लिए बजाते हैं दिल क्या करे फ्रॉम द वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एल्बम्स सलाम इश्क 2007 की रिलीज़। वैसे दोस्तों अगर आपको भी ऐसा कोई एल्बम पता है जिसके सारे के सारे गाने आपको पसंद है तो टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धी SIDDH है, क्योंकि बजाते हैं यार उस एल्बम के सारे गाने राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

कभी कभी कोई गाना ऐसा होता है जो बजते ही शाम का मूड चेंज कर देता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और 2000 एरा का एक ऐसा ही टाइमलेस ट्रैक है कल हो ना हो। यार जैसे ही उसका सॉफ्ट पियानो इंट्रो शुरू होता है ना, सडनली सब कुछ थोड़ा सा स्लो लगने लगता है। ड्राइव हो, चाय हो, या बस विंडोज से बाहर देखना, यार इस गाने की खूबसूरती ही ये है कि ये लाउड नहीं है पर इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा डीप है। सिंपल सी मेलोडी है, सोलफुल सी आवाज़ है, वो भी सोनू निगम की, और वो लाइन जो याद दिलाती है कि हर दिन को ना थोड़ा और अप्रिशिएट करना चाहिए। और इसीलिए जब भी ये ट्रैक रेडियो पे आता है ना, लोग ऑटोमेटिकली वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा ही लेते हैं, क्योंकि कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते, वो ना मूड बन जाते हैं। तो दोस्तों आप भी बताना कि कौन सा ऐसा बॉलीवुड का गाना है जो सुनते ही आपको भी वो पॉज और फील मोमेंट मिलता है। DM me on Instagram RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और तब तक के लिए आपके लिए कल हो ना हो, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Yambala. Murga, murga. Na vidvala murga.
1: Milchi, murga. Hello.
2: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
1: हाँ जी, हाँ जी।
2: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
1: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
2: होल्ड कर रहा हूँ।
1: हाँ जी, हेलो।
2: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
1: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
2: कनेक्ट नहीं हो पाता है? सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
1: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
2: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
1: है 3rd K 5/14A फर्स्ट फ्लोर नगर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
2: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
1: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
2: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
1: मेरा सनसाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला है।
2: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
1: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
2: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
1: बी पॉजिटिव, 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
2: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
1: राहुल शर्मा। और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
2: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
1: सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल होना चाहिए।
2: आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
1: क्या
2: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा।
3: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
1: नहीं,
2: दोबारा कॉल करेंगे। आपका वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

नोटिस किया है कि हर दिन ना अर्जेंसी नहीं होती। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज का दिन ना उन्हीं में से है जहां सब कुछ अभी नहीं थोड़ी देर बाद कैटेगरी में लगता है और ये परफेक्टली ओके है क्योंकि आज हर किसी को ना हीरो बनने की जरूरत नहीं, कभी कभार बस प्रेजेंट रहना ही काफी होता है। तो अगर आज आपने भी अपने आप को थोड़ा स्लो चलने दिया है तो समझो कि आपने भी एक बहुत ही सही डिसीजन लिया है। तो आप भी जरूर बताना कि आज आपने किस चीज को कॉन्शियसली स्लो रखा है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि यार मैंने अपनी प्लेलिस्ट को थोड़ा सा धीमा कर दिया है क्योंकि ये जो शाम है वो बहुत ही सुहानी है, तो यार हर बार हाई बीट्स अर्जेंट बीट्स की जरूरत नहीं है। तो चलिए ये धीमा सा गाना सुनते हैं राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
1: हिट हिट हिट हिट गाना, हिट गाना, हिट गाना।
0: Only on Radio Mirchi, New York. It's hot.

कुछ खास गाने और उनके कुछ खास किस्से। शाम शानदार सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और गेरुआ ये गाना सुनते ही ना एक अलग ही ड्रीमी सी फीलिंग आ जाती है। पर एक बहुत ही अमेजिंग सा फन फैक्ट है इस गाने का कि यार अरिजीत सिंह ने जब ये गाना रिकॉर्ड किया था तो बस एक टेक में रिकॉर्ड किया था। अब ऐसे तो कई सारे गाने हैं जो एक टेक में रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेकिन ये गाना उसमें भी खास है क्योंकि रिकॉर्डिंग के टाइम पे ना बस डायरेक्टर ने बोल दिया था कि वार्म अप के लिए एक रफ टेक ले लो, मतलब जस्ट एक यू नो एक रिहर्सल टेक ले लो। और जब वो रफ टेक अरिजीत सिंह ने गाया तो वही बन गया फाइनल मास्टर टेक। और टीम ने कहा कि यार ये आवाज़ ही इतनी अमेजिंग है, इतना एफर्टलेस डेप्थ है इस आवाज़ में, इस टेक में, कि इसी टेक को फाइनल करते हैं। तो बस फाइनल टेक कभी किया ही नहीं और यही टेक फाइनल बन चुका था। तो मतलब बोलते हैं ना कभी कभी प्रैक्टिस भी परफेक्शन बन जाती है, तो अरिजीत जी के साथ कुछ ऐसा ही होता है। और शायद इसलिए ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सिंगर्स ऑफ इंडियन सिनेमा। वैसे आपका फेवरेट अरिजीत सिंह का गाना कौन सा, टेल मी ऑन इंस्टेंट आरजे मिर्ची सिद्धि IDDHI। और फिलहाल सुनते हैं ये वन टेक सॉन्ग ऑफ अरिजीत सिंह, गेरुआ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और देखते ही देखते ये शाम भी ढलने आ चुकी है और हमारे भी जाने का वक्त आ चुका है। लेकिन दोस्तों, आपके साथ शाम शानदार में अलग अलग धमाकेदार गाने बजाने का जो मज़ा है, उसे मैं मिस नहीं करने वाली। इसलिए कल फिर से आपसे मिलने आऊँगी फ्रॉम 4 to 8 PM EST। और आज के लिए आप कहीं ना जाइए, क्योंकि यार प्यार के जो अनोखे फंडे हैं वो आपको समझाने आ रही है रोशी। तो कहीं ना जाइए, जमे रहिए, बने रहिए राइट हियर ऑन मिर्ची। और आपके जो सॉन्ग रिक्वेस्ट है वो मुझे सेंड करते रहिए ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल @RJMirchiSiddhi SIDDHI ओनली ऑन इंस्टा। और आपके लिए ये अगला तड़कता फड़कता गाना जाते जाते राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।